क्या आपको पता है कि अदनान सामी जी ने 120 किलो रिड्यूस किए थे आज से कुछ साल पहले, और ये अफवाह भी निकल कर आई थी कि इन्होंने अपने वेट को कम कराने के लिए कोई सर्जरी कराई थी। हाँ देखो, ये अफवाह ही थी, बिकॉज अदनान सामी ने बोला है कि उन्होंने सर्जरी नहीं कराई थी। और अचानक से 120 किलो वजन घटाने का रीजन क्या था बताऊं मैं आपको? इन्होंने दिल पर पत्थर रखकर बता ही दिया है कि इनका वजन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि बहुत सारी बीमारियां लग चुकी थी, और डॉक्टर ने इनके फादर साहब के सामने कह दिया कि आपके बेटे के पास मात्र 6 महीने हैं जीने के लिए। तो वहां से इनकी आंखें खुली और इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ अपना पहला स्टेप जो है ना वो आगे बढ़ाया। तो डेफिनेटली सेलिब्रिटीज, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी पर्सनल इंसाइट्स हम सबके लिए भी एक सबक बन सकती है। आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान, एंड डेफिनेटली बहुत सारी बातें कर रही है आपका इंतजार।

0: दिस इंडियन इंडिपेंडेंस डे एक कहानी जो हर हिंदुस्तानी के दिल को छू जाएगी।
1: कौन सी आजादी और किसका मुल्क?
0: एक घर, दो मजहब।
2: आप यहाँ नहीं रह सकते।
3: मैं कितने नहीं जाना, ये मेरा घर है।
0: हर बंटवारे के बीच कुछ रिश्ते सरहदों से बड़े होते हैं।
4: वो माँ है, माँ माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए।
0: बंटवारा 1947 स्टारिंग सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी एंड मोर। रिलीजिंग 14th अगस्त आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क्स सिंगापुर।
5: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
6: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में रहो।
2: क्या बात है, क्या बात है। ऐसा क्यों होता है कि दूसरों की फोटोज में लजीज खाना देखते ही मुझे और आपको भूख लग जाती है। हाँ, आज ये नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ होता है, होता है। सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, बहुतों के साथ ऐसा होता है कि हम खाने की वीडियोस स्क्रॉल करते करते ना भूख का एक फील जो होता है ना वो करने लग जाते हैं, और ये नॉर्मल है। हाँ, आज ये नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। एंड डेफिनेटली आपको बताना चाहूंगी कि अपने जो जॉनस ब्रदर्स हैं, हाँ जी, प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड देवर जेठ, राइट, उनके फोटो वीडियोस में ना इंडियन कुजीन की वीडियो डली जिसमें रानी कचौरी, अनियन भजिया, रॉयल पिस्ता लैम्प चॉप, मुर्ग मखानी, पापड़ की टोकरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें जब नजर आई तो लोगों ने कॉमेंट सेक्शन भर दिया कि आहा, ऐसा खाना छुटाए नहीं छूट पाता है, चाहे आप जितनी डाइट का रिचुअल्स है ना वो फॉलो कर ले। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live.

0: माँ है माँ, माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए।
1: बंटवारा 1947 स्टारिंग सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी एंड मोर। रिलीजिंग 14th August आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क सिंगापुर।
2: कह दूं तुम्हें
3: हाँ
2: या चुप रहूं
3: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: भाई दूसरों के पॉडकास्ट सुनते सुनते आपके मन में भी सवाल उठ जाते हैं कि मुझे भी ऐसे सवाल पूछने, या फिर आप हम सभी आरजेस को सुनते सुनते ये फील कर लेते हो कि यार हम भी काश इनकी तरह बोल पाते। सो डेफिनेटली आप एक क्रिएटर भी बन सकते हैं, एक ऑडियो प्रोडक्शन पर्सन भी बन सकते हैं, एक खूबसूरती से प्रेजेंटेशन देने वाले शख्स भी बन सकते हैं, इंटरव्यूइंग स्किल्स भी आपको मिल सकती है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स भी मिल सकती है, वो भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट से। डेफिनेटली मस्ती मीडिया नेटवर्क आपके लिए लेकर आया है द आरजे अकेडमी। हाँ जी, आपको लाइव रेडियो एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल स्टूडियो ट्रेनिंग, एक्सपर्ट मेंटरशिप एंड अपॉर्चुनिटीज दिखाने के लिए यहाँ एक रियल प्लेटफॉर्म मिल सकता है। एप्लीकेशंस के लिए हमें ईमेल लिखिए।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स, ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
2: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर। जब एक धुन से साज का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
3: I love you, रसना।
2: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards, only on Radio Mercy 24/7 Live. 25.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में रहो।
0: You know what? जब हमें ना एक छोटा सा गैजेट चलाना आ जाता है ना, मतलब पूरी तरीके से आ जाता है ना, फिर हम उसका मिसयूज कैसे करें, उसके अंदर क्या फीचर्स बाकी हैं, ये जानने के लिए तड़प जाते हैं और फिर क्या होता है उसका कहीं ना कहीं मतलब नुकसान ही हो जाता है, राइट? सो डेफिनेटली बहुत सारी टेक्निकल स्किल्स आपके पास हैं, एआई प्लेटफॉर्म से लेकर ज्योग्राफिकली चीजें सर्च करने के बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, लेकिन क्या आपने इसका मिसयूज करने के बारे में सोचा है? सोचा तो होगा, नहीं सोचा होगा तो सोच रहे होगे या सोचने वाले होगे। सो डेफिनेटली अगर हम गूगल अर्थ प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसका यूज भी अलग अलग तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे किया जाता है, लेकिन रिसेंटली एआई जनरेटेड हाइपर रियल गूगल अर्थ की जो इमेजेस निकाली गई हैं वो सच्ची नहीं है। मतलब आप एकदम रियलिटी में एंटर हो जाओ, आपको ऐसा लगे कि ओ ओ ओ ये तो सच से भी ज्यादा सच है, तो समझ लेना ये सच नहीं है, ये कहीं ना कहीं एआई प्लेटफॉर्म का नया तरीका है आपको थोड़ा और बेटर फील कराने का। आज नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान, आती हूँ मैं जस्ट इन अ शॉर्ट, बाय।

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

यू नो वॉट, अगर आपको मल्टी टैलेंटेड लोग ढूंढने हैं ना, तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको जाना है सिर्फ और सिर्फ क्रिकेटर्स के पास, बिकॉज क्रिकेटर्स गली से क्रिकेट खेलते खेलते रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल तक तो पहुंच ही जाते हैं, और उसके बाद वो टीवी कमर्शियल्स में भी नजर आते हैं, ब्रांड इंडोर्स करते हुए भी नजर आते हैं, एक्टिंग करते हुए भी नजर आते हैं, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इन्होंने अपनी पावर को अनलॉक करना सीख लिया है. हाँ जी, मैं आरजे नुपुर मसी मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी, जाने माने क्रिकेटर रोहित शर्मा जो है ना, वो टेलीविजन इंडस्ट्री से अपना डेब्यू करने वाले हैं. सुने में आ रहा है कि एज एन एंकर और प्रेजेंटेशन की जो ड्यूटीज है उनको निभाते हुए इस सितंबर एक शो टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट होगा, जिसमें ये एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं. सो डोंट यू थिंक सो, जो क्रिकेटर्स हैं उनकी झिझक जो है ना, मतलब हेजिटेशन जो है ना, वो क्रिकेट खेलते खेलते निकल जा रही है यार. हाँ, आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ.

0: दिस इंडियन इंडिपेंडेंस डे, एक कहानी जो हर हिंदुस्तानी के दिल को छू जाएगी।
1: कौन सी आजादी और किसका मुल्क?
0: एक घर, दो मजहब।
2: आप यहाँ नहीं रह सकते।
3: मैं कितने नहीं जाना, ये मेरा घर है।
0: हर बंटवारे के बीच कुछ रिश्ते सरहदों से बड़े होते हैं।
4: वो माँ है, माँ माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए।
0: बंटवारा 1947, स्टारिंग सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी एंड मोर। रिलीजिंग 14th अगस्त आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क सिंगापुर।
5: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
6: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: सिंगापुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में
0: रहो। कौन कहता है कि लड़कियां जो है ना सरकास्टिक टोन में बात करती हैं, लड़कियां ही एक दूसरे को ताने दे पाती हैं, लड़कियां ही ये वो एक्सेट्रा गॉसिप करती हैं। हाँ भाई, मुझे तो लगता है ये बोलते बोलते हम थोड़ा सा आगे निकल आए हैं और आजकल मेल जो कैटेगरी है वो इन चीज़ों में और ज़्यादा आगे है यार। सो रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपको बताना चाहेगी, जाने माने सिंगर कुमार सानू 90s के बॉलीवुड सिंगिंग इंडस्ट्री की धड़कन रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी बातें करते करते एक बात बोल दी कि मैं कुछ भी करूं, कैसा भी करूं, मैं एटलीस्ट अपने फैंस को किस तो नहीं करता, नहीं करता। ऑफ कोर्स ये तंज कस रहे थे किसकी तरफ, उदित नारायण जी की तरफ, जिनकी कंट्रोवर्सी किसिंग एरिया से रिलेटेड रिसेंटली भी निकल कर आई है और पहले भी ऐसी बातें हो चुकी हैं, डोंट यू थिंक सो। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान, आती हूँ मैं जस्ट इन अ शॉर्ट, बाय।

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया अकेडमी इज नाउ

0: केतल को छू जाएगी।
1: कौन सी आजादी और किसका मुल्क?
0: एक घर दो मजहब।
2: आप यहाँ नहीं रह सकते।
3: मैं कितने नहीं जाना, ये मेरा घर है।
0: हर बंटवारे के बीच कुछ रिश्ते सरहदों से बड़े होते हैं।
4: वो माँ है, माँ माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए।
0: बंटवारा 1947 स्टारिंग सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी एंड मोर। रिलीजिंग 14th August आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क सिंगापुर।

0: शोर सुन टकाटक,
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: वो कहते हैं ना, एक बार दिल टूट जाता है तो फिर उसे जुड़ने में सालों साल लग जाते हैं। हाँ, आप चाहे ग्लू लेकर भी बैठ जाए ना, ग्लू की पूरी जिब्बी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो दिल जो है वो जुड़ने का काम नहीं कर सकता। हाँ, सो आज इन पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। बताना चाहूंगी कि फरहान अख्तर, जिन्होंने डॉन मूवी के तीसरे पार्ट के लिए रणवीर सिंह को फाइनल कर लिया था, लेकिन बाय द टाइम रणवीर सिंह की धुरंधर मूवी रिलीज होती है और तब से ये अटकलें आ जाती है कि ये मूवी अचानक से छोड़ रहे हैं, तो फरहान अख्तर ने कुछ करोड़ का जो फाइन है वो इनके ऊपर लगा दिया और रणवीर सिंह ने उसे पे भी कर दिया। मतलब बहुत सारी चीजें हो गई है ना। अब इसी बीच मैं आपको बताना चाहूंगी, फरहान अख्तर ने कह दिया है कि अब तो मुझे लगता है कोई भी एक्टर कमिटमेंट देने के स्टेज पे है ही नहीं। उसने हाँ तो कह दिया है, लेकिन क्या वो एक्टिंग करने के लिए अपने कमर्शियल्स, अपने कमिटमेंट्स उनके लिए आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चीजें बहुत ज्यादा मतलब खींच दी गई हैं, बट स्टिल देयर इज अ होप कि हाँ, मूवीज जो है वो बनती रहेंगी। आरजे ऊपर मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। डोंट गो एनीवेयर मेरी जान, आती हूँ मैं इन अ शॉर्ट वाइल।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: सुन टकाटक,
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो। सो इंडिया के चक्कर लगाने के लिए आपको तो बहुत सारे बहाने ढूंढने पड़ते होंगे, राइट? लेकिन हमारे बीच बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो कि इंडिया से बाहर बसे हुए हैं और वो अच्छे खासे बहाने ढूंढकर बार बार इंडिया पहुंच रहे हैं। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ हमारी देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा की। प्रियंका चोपड़ा जो है वो रिसेंटली कई बार इंडिया विजिट कर चुकी हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अपकमिंग मूवी वाराणसी का जो शूट है ना, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। एनीवेज, इस बार तो उन्होंने अपने हस्बैंड निक जोनस के साथ भी इंडिया में एंट्री ली और वहाँ पे वो लोग इंडियन कुजीन खाते हुए भी नजर आए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो इस डायरेक्शन में भी जा रही है कि धीरे धीरे से प्रियंका चोपड़ा जो है ना, वो वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग एक्ट्रेस बन चुके हैं। हाँ जी, 30 करोड़ उन्होंने रिसेंटली मूवी के लिए चार्ज किए हैं। इतना अभी तक किसी ने नहीं किया। सो डेफिनेटली देसी गर्ल यानी प्रियंका चोपड़ा जो है, जब काम करती हैं तो बेस्ट काम करती हैं। अदरवाइज वो थोड़ा सा मतलब शांत रहना पसंद करती हैं, राइट? चलिए, मस्ती मॉर्निंग शो पर मैं आरजे अनुपर आपके साथ बनी हुई थी। अभी के लिए फिलहाल टाटा बाय बाय, मुलाकात करते हैं बहुत जल्द।

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे। और कहीं कोई जाता है 105 बच्चे।
2: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
3: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
4: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy at मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musti 24/7. Email a brief intro to info@radiomusti.com.sg requesting for application form.
5: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: नमस्कार सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: वर्ल्ड न्यूज, फ्रेश अपडेट्स और थोड़ा बॉलीवुड का मजा भी. मेक योर मंडेज मैटर विद द मॉर्निंग शो विद रेणुका, 7 AM onwards.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out.
3: जोश में रहो.
4: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
5: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे. पर हाँ, तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे. मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे.

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर अब सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स, ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats

जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtapes with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards, only on Radio Musty 24/7 Live. 25.

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्सटेप।
2: कितना खूबसूरत गाना है ये सारी चीजें कितना हम मिस करते हैं ना, कि कोई तो ऐसे लिरिक्स लिख देता कि वो हमारे साथ रह जाते। भाई दौर बदल जाता, लेकिन वो आवाजें और वो बातें और जिस तरह से उन्होंने, जिस इमोशन के साथ उन्होंने गाया है, वो हमारे साथ यूं ही हमेशा हमेशा बना रहता। कि संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है क्या कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। हाय राम। एंड हर बार की तरह ये गाना मुझे उतना ही इमोशनल कर देता है। दिस गाना हैज गॉट दैट कैपेबिलिटी। हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जी हाँ, यहाँ पर शुरू हो चुका है मस्ती 90s मिक्सटेप। एंड मैंने आज पर्टिकुलरली इस गाने के साथ इसलिए शुरुआत की क्योंकि आई वॉन्टेड टू सेट द थीम फॉर टूडे। भाई क्या है कि हाँ, आपको तो पता ही है 15 अगस्त यानी कि हमारे हिंदुस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला दिन आ रहा है। बट मैं आज आपको खींच के लेकर चलूंगी 90s के स्वतंत्रता दिवस के सेलिब्रेशंस पर। ना अगर याद दिला दिया मैंने वो लड्डू के पीले पीले पैकेट, ना अगर याद दिला दिया कि हम क्या कुछ नहीं किया करते थे। एक एक गलियों में जाएंगे और जाकर जो है आपको बताएंगे कुछ मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस से। कुछ कभी आप हमें लिखकर भेज देना 9151893 पर कि जब आप बड़े हो रहे थे तो कब, तब जो है कैसे मनाया जाता था हमारा इंडिपेंडेंस डे, स्कूल में क्या करते थे, मोहल्ले में क्या होता था। देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट। मैंने सोचा इट्स द परफेक्ट टाइमिंग, कमिंग वीकेंड जो है वो आने वाला है। इनफैक्ट जब जिस दिन इस शो का ऑनकोर जाता है, विच इज दिस सैटरडे को सुबह 8 से जो है 11 बजे तक, दैट इज गोइंग टू बी 15th of August। सो आई वॉज लाइक परफेक्ट फिट हो गया है ये तो एकदम। सो चलिए थामिए हाथ और लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट करते हुए बढ़ जाते हैं आगे। जी हाँ, 90s के गानों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा आपसे 3 घंटे, लेकिन आज मूड कुछ भारत के, इंडिया के इंडिपेंडेंस का यूं ही बना रहेगा। एंड यू आर गोइंग टू लव एवरी बिट ऑफ इट, ट्रस्ट मी, आई एम श्योर दैट यू नो ऑलरेडी व्हाट वी आर गेटिंग इनटू। राइट, चलिए फिलहाल तो लेते हैं एक 90s वाला म्यूजिकल ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आप सुन रहे हैं मस्ती 90s मिक्सटेप।

0: दिस इंडियन इंडिपेंडेंस डे एक कहानी जो हर हिंदुस्तानी के दिल को छू जाएगी।
1: कौन सी आजादी और किसका मुल्क?
0: एक घर, दो मजहब।
2: आप यहाँ नहीं रह सकते।
3: मैं कितने नहीं जाना, ये मेरा घर है।
0: हर बंटवारे के बीच कुछ रिश्ते सरहदों से बड़े होते हैं।
4: वो माँ है, माँ माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए।
0: बंटवारा 1947 स्टारिंग सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी एंड मोर। रिलीजिंग 14th अगस्त आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट यू बाय विजन डिस्क सिंगापुर।
5: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे?
6: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
7: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पर फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
1: अच्छा 90s वालों, एक मेमोरी टेस्ट करते हैं, ठीक है? 15 अगस्त की सुबह, वो सफेद स्कूल यूनिफॉर्म
2: याद है।
1: आप सुन रहे हैं मस्ती 90s मिक्सटेप, मैं अंतरा यहाँ पर आपके साथ, एंड 90s के 15 अगस्त को हम याद कर रहे हैं यहाँ पर। वैसे तो स्कूल यूनिफॉर्म रोज ही पहनते थे, लेकिन पता नहीं क्यों 15 अगस्त को वही यूनिफॉर्म थोड़ी ज्यादा सी सफेद, थोड़ी ज्यादा सी क्रिस्प और थोड़ी ज्यादा स्पेशल लगा करती थी। एक दिन पहले से प्रिपरेशन शुरू की भाई सफेद शूज ना बिल्कुल ही, ये मतलब चलता फिरता वाला सफेद जो हम चौक वॉक से कर लिया करते थे वो नहीं चलेगा। भाई आज तो यूनिफॉर्म प्रॉपर कड़क आयरन होगी, जो जूते हैं वो प्रॉपरली क्लीन एकदम सफेद किए जाएंगे, वो वाले शू पॉलिश के साथ सफेद वाले। और सुबह मम्मी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम, शर्ट पर छोटा सा वो फ्लैग का पिन जो है वो लगाती थी, एंड वो भी पेपर वाला। बाद में इट स्टार्टेड कमिंग वो थोड़े से मेटल बैजेस, तो बहुत बाद में आए, प्लास्टिक के आया करते थे जब हम पेपर के नहीं लगाते थे। और उसके पीछे एक सेफ्टी पिन जो है उससे, एंड मम्मी बोलती थी हिलना मत पिन चुप जाएगी करके, वो लगा दिया करती थी। फिर मिरर में खुद को एक बार देखना तो हमको बनता ही था, पता नहीं वो छोटा सा तिरंगा क्या करता था हमारे साथ, लेकिन उसे लगाते ही अपनी यूनिफॉर्म पर थोड़ा एक्स्ट्रा प्राउड फील होता था। स्कूल पहुंचते ही तो पूरा ग्राउंड ही अलग टाइप का दिखता था, किसी के हाथ में फ्लैग है, किसी के गाल पे तिरंगे के कलर्स है, कोई कल्चरल प्रोग्राम के कॉस्ट्यूम में भाग रहा है, टीचर्स अनयूजुअली बिजी नजर आते हैं और हम अनयूजुअली डिसिप्लिन्ड नजर आते थे। फिर असेंबली, फ्लैग होइस्टिंग, नेशनल एंथम, और उस दिन जन गण मन गाते वक्त पता नहीं क्यों आवाज ऑटोमेटिकली थोड़ी और ज्यादा लाउड नहीं हो जाती थी, तो शायद पेट्रियोटिज्म जैसे बड़े वर्ड्स का मीनिंग पूरी तरह से हम समझ भी नहीं पाते थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन वो जो जज्बा है वो जरूर समझ में आता था कि आज का दिन काफी खास है, कि ये जो फ्लैग है वो काफी स्पेशल है और इसे जमीन पर नहीं गिरने देना है। स्कूल से घर लौटने के बाद भी वो जो तिरंगा है तुरंत शर्ट से नहीं निकलता था, कभी पूरा पूरा दिन लगाकर उसी को उसी में हम लोग घुमा करते थे, कभी केयरफुली उसको निकाल कर किसी बुक के अंदर संभाल कर रख देते थे। आज 15 अगस्त को देखने का नजरिया शायद काफी मैच्योर हो गया है, लेकिन वो सफेद यूनिफॉर्म, वो सेफ्टी पिन और वो सीने पे लगा हुआ छोटा सा कागज का तिरंगा, देश से अपना पहला इमोशनल कनेक्शन शायद वही तो था। यह है मस्ती 90s मिक्स टेप ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
3: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musty 24/7. Email a brief intro to info@radiomusty.com.sg requesting for application form.
4: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
5: As the sun rises, so does hope. Begin your day with devotion, harmony and positivity with the Devotional Hour on Radio Musti 24/7. Musti Pe Bhakti, subah 6 baje se.
6: Pencil se kasat ki reels uljhana. Crush ka naam heart pe likhkar hai sharmana. ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
7: अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे, बाय द वे वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जी हाँ, आप सुन रहे हैं मस्ती 90s मिक्स टेप। और जैसा कि मैंने आज कहा कि आज हम 15 अगस्त की उन तैयारियों के बारे में और उस दिन के बारे में जरूर बात करेंगे, बिकॉज इट्स क्वाइट क्लोज एंड ऑल आई कैन थिंक अबाउट इज दोज डेज इन द 90s, राइट भाई। वो सफेद यूनिफॉर्म और सीने पर लगा वो छोटा सा तिरंगा, हमने उसको याद किया। अब जरा चलते हैं स्कूल ग्राउंड में, थोड़ी देर और रुकते हैं। फ्लैग होस्टिंग हो गया, नेशनल एंथम भी हो गया। अब प्रिंसिपल मैम जो है वो माइक पर आई। डियर स्टूडेंट्स, एज वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस, इंग्लिश, बिकॉज कॉन्वेंट स्कूल में मैं पढ़ती थी तो वहां पे प्रिंस हमारी जो थी वो इंग्लिश में ही हमें स्पीच दिया करती थी। और हम, जी हाँ, वो इतनी धूप में, ठीक है, गर्मी में हमारा शर्ट जो सफेद है वो पसीने से पीठ तर बतर हो रखी होती थी, लेकिन पूरे के पूरे रिस्पेक्ट के साथ हमें सुनना पड़ता था। एंड ऑफकोर्स द होल कल्चरल प्रोग्राम एंड एवरीथिंग यूज टू हैपन, बट आंखें जो है वो कुछ और ही ढूंढ रही होती थी हमें। एक्साइटमेंट जो है वो सुबह से दिल में इसी बात का रहता था कि वो जो मिठाई के पीले पीले पैकेट्स टेबल पे सजा के रखे जा रहे हैं, सच बताइए देशभक्ति दिल में थी पर नजर लड्डू के पैकेट पर भी थी। पता नहीं आपके स्कूल में मिलता था क्या।

हमारे स्कूल में येलो कलर के, आई जस्ट कैन नॉट फॉरगेट, येलो कलर के पैकेट में बूंदी के लड्डू डाल के जो कि पिचक जाते थे वो मिलते थे, और हम उसका डबल डोज लेने के लिए बार बार लाइन पे जो है लगा करते थे. बट लेकिन हम ऐसे बहुतों के लिए यू नो इट वॉज जस्ट लाइक मी, यू नो 15 अगस्त का ऑफिशियल टेस्ट हुआ करता था बूंदी का लड्डू, कभी छोटे पेपर पैकेट में, कभी एक लड्डू और साथ में दो टॉफीज, और अगर स्कूल का जेनरस वाला मोड ऑन हो गया तो समोसे भी दे दिया करते थे. फिर स्पीचेस चल रही है, चीफ गेस्ट जो है वो बोल रहे हैं, टीचर डिसिप्लिन मेंटेन करा रहे हैं, पीछे हमारी साइलेंट कैलकुलेशन कर रही है कि भाई जब डिस्ट्रीब्यूशन चालू होगा तो हम उसमें वापस से लाइन में जाकर कैसे लगेंगे. फिर जैसे ही टीचर्स कार्टन्स लेके आगे बढ़ते, एनर्जी ही चेंज, लाइन ऑटोमेटिकली सीधी हो जाती थी कि आज हम अगर गुड गर्ल एंड गुड बॉय बन जाएंगे तो क्या पता ऐसे ही खुशी खुशी में हमें दो पैकेट पकड़ा दिए जाए बूंदी के लड्डू के, और पैकेट हाथ में आते ही क्विक इंस्पेक्शन कि तेरे में कितने हैं, मेरे वाले में दो हैं, अरे मुझे भी दिखा मेरे में भी दो हैं, अरे मेरे में तो ऐसा लग रहा है आधा आधा ऐसे पिचक, समझ में नहीं आ रहा है. और वो बूंदी का लड्डू भी ना नॉर्मल दिन में मिल जाए तो बस लड्डू, लेकिन 15 अगस्त के स्कूल के ग्राउंड में मिलता तो उसका टेस्ट ही अलग हो जाता था. शायद क्योंकि उसमें वो सुबह जल्दी उठना, वो क्रिस्प यूनिफॉर्म, फ्लैग होइस्टिंग, दोस्तों की मस्ती और एक हॉलिडे जो स्कूल जाकर सेलिब्रेट करने में भी काफी अच्छा लगता था. आजकल 15 अगस्त पर फैंसी ब्रंचेस हो सकते हैं, बिग सेलिब्रेशंस हो सकते हैं, लेकिन 90s वालों से पूछो इंडिपेंडेंस डे की एक बहुत ही सिंपल सी टेस्ट मेमोरी क्या है, चांसेस आर कोई भी मुस्कुरा कर यही बोलेगा यार वो स्कूल वाले बूंदी के लड्डू. हाय कोई खिला दो. स्टे ट्यून्ड, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
2: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
2: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
0: जीजी।
2: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
0: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: पेंसिल से कसत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: Welcome back, Radio Masti 24/7 Live on Trap के साथ यहाँ पर चल रहा है Masti 90s Mixtape। 15 अगस्त को याद करते हुए 90s के टाइम कर बिल्कुल। So 90s में 15 अगस्त की सुबह अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती थी by the way, क्योंकि सुबह सुबह कहीं कॉलोनी के पार्क से, किसी स्कूल ग्राउंड से या मोहल्ले के कमेटी के लाउड स्पीकर से आवाज आनी शुरू हो जाती थी। इट्स लाइक यू नो आपको फीलर जो है वो ऑलरेडी आने लगता था। इनफैक्ट हमारे कानपुर में तो 2-3 दिन पहले से ही 15 अगस्त के, अगर जैसे आज का दिन है तो आज से ही वहां पे ये गाने बजने शुरू हो जाते हैं चौराहे चौराहे पर। और बस 15 अगस्त वाले दिन तो आंख खुलते ही पता चल जाता था कि आज तो 15 अगस्त है। कभी मेरे वतन के लोगों, यू नो मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की, एंड वो जो कोरस है ना, वो इट्स जस्ट I have goosebumps remembering everything. और वॉल्यूम वो तो पूरे मोहल्ले के लिए एक ही सेटिंग, लाइक वन सेटिंग फिट्स ऑल होता था। आपको सुनना है बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनना है वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सुनोगे ज़रूर। बालकनी का दरवाज़ा खोलो, गाना और क्लियर हो जाता था। गली में निकलो, कहीं यू नो तिरंगे लग रहे हैं, कहीं चेयर्स अरेंज हो रही हैं, कोई अंकल माइक टेस्ट कर रहे हैं, हेलो हेलो 1 2 3 आवाज़ आ रही है, और वो माइक की कर वाली जो फीडबैक की साउंड होती है वो सुनाई दे रही है। बस कंप्लीट 90s इंडिपेंडेंस डे का पैकेज। फिर कॉलोनी के बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, किसी को फ्लैग डिस्ट्रीब्यूशन की ड्यूटी मिली हुई है, कोई कल्चरल प्रोग्राम के लिए रेडी हो रहा है, और रेडी भी क्या हो रहा है, एनुअल प्रोग्राम कल्चरल प्रोग्राम हम सारे बच्चों को रेडी करने का एक ही वो था कि जो भी पहना हो मम्मी की एक लिपस्टिक उठाओ, लाइन में प्रोडक्शन लाइन के जैसे खड़े कर दो सबको, सबको लिपस्टिक रूज और आई शेडो काजल सब कुछ उसी से हो जाएगा। एक लिपस्टिक सब काम कर देता था उस टाइम पे 90s में। बस बाकी उस दिन भी एक ही काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ रहती थी कि मिठाई कब मिलेगी। बट ये बात तो थी यार, वो पेट्रियोटिक सॉन्ग सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं लगते थे, पूरा मोहल्ला जो है उन्हें साथ में सुनता था। एक घर का सेलिब्रेशन नहीं, पूरी गली का सेलिब्रेशन होता था। आज सब हम लोग अपनी अपनी प्लेलिस्ट लेकर चलते हैं, अपने हेडफोन्स में सुनते हैं, लेकिन तब मोहल्ले की प्लेलिस्ट सबकी हुआ करती थी। और शायद इसीलिए आज भी कहीं सुबह सुबह दूर से मेरे देश की धरती सुनाई दे जाए तो एक सेकेंड के लिए सही वही कॉलोनी, वही बालकनीज, वही तिरंगे और 15 अगस्त की वो 90s वाली सुबह आंखों के सामने आ जाती है। कुछ फेस्टिवल्स ना कैलेंडर से याद आते हैं और कुछ उनकी आवाज़ से। सुनते रहिए रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मस्ती 90s मिक्सटेप।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live.

पेंसिल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। जी हाँ, ट्रॉप के साथ और चल रहा है यहाँ पे मस्ती 90s मिक्स टेप। 15 अगस्त 90s के स्कूल में हम लोग वहाँ पर बिल्कुल सेलिब्रेट कर रहे हैं, याद कर रहे हैं उन दिनों को। एंड 15 अगस्त का सेलिब्रेशन 15 अगस्त को स्टार्ट, जैसे कि मैं बोल रही थी कि होता ही नहीं था, असली एक्साइटमेंट तो एक दो दिन पहले से शुरू हो जाती थी जब टीचर अनाउंस करती थी कि टुमारो एवरीवन ब्रिंग ऑरेंज वाइट एंड ग्रीन क्रेप पेपर। जी हाँ, बस उसके बाद पढ़ाई तो सेकेंडरी, डेकोरेशन प्राइमरी हो जाया करता था। अगली सुबह किसी के हाथ में चार्ट पेपर है, किसी के पास सिजर्स है, कोई फेविकॉल की बियर बॉटल लेकर आ रहा है, कोई तीन जो है रोल्स क्रेप पेपर के ऐसे ही कैरी करता हुआ इधर से उधर जा रहा है जैसे इवेंट मैनेजर वही हो। फिर क्लासरूम में भी टीम्स बन जाती थी कि तुम ऑरेंज काटो, मैं ग्रीन बना रही हूँ, वाइट पेपर किधर है, वो पेपर के चेन्स याद है जो हम बनाते थे, एक स्ट्रिप को सर्कल बनाओ, उसी में नेक्स्ट स्ट्रिप डालो, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, और धीरे धीरे एक लंबी सी ऑरेंज वाइट ग्रीन जो है वो चेन तैयार हो जाती थी। परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं। कहीं स्ट्रिप मोटी है, कहीं पतली है, कहीं ऑरेंज के बाद गलती से ऑरेंज दोबारा आ गया है, और फेविकॉल पेपर पर कम उंगलियों पर ज्यादा लगा करता था। और फिर वो ड्राइड फेविकॉल को फिंगर से पील करना, अरे वो तो भाई डेकोरेशन के अंदर वही फ्री एंटरटेनमेंट था हमारा। कोई ब्लैक बोर्ड के कॉर्नर्स डेकोरेट कर रहा है, कोई हैंडमेड तिरंगे बना रहा है, कोई क्लास का जो सबसे आर्टिस्टिक बच्चा अशोक चक्र बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर इतने सीरियस मोड में एक बंदा हुआ करता था। ओ माई गॉड, वो मतलब उसको ऐसा लगता था कि प्राइम मिनिस्टर ही घोषित कर दिया गया, वो इतनी सिंसियरिटी के साथ बना था, विच इज अ गुड थिंग। बट हम लोग ऐसे कहते थे कि भाई इससे तो अभी बात ही मत करो, ये तो बहुत बिजी है। सो 24 लाइन होनी चाहिए और बाकी सब हाँ हाँ तू बनाना, तू बना, कोई नहीं तू बना, टेक योर टाइम। और जब फाइनल क्लासरूम रेडी होता था ना, टेढ़ा मेढ़ा ही सही, अनइवन ही सही, लेकिन हमें लगता था हमारी क्लास सबसे ज्यादा सुंदर है। आजकल डेकोरेशन एक क्लिक में ऑर्डर हो जाती है, परफेक्ट कट, परफेक्टली प्रिंटेड एंड परफेक्टली मैचिंग, लेकिन 90s में परफेक्शन थोड़ी कम थी, पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा थी। इसीलिए वो हैंडमेड पेपर चेन्स आज के किसी भी फैंसी डेकोर से ज्यादा क्लियरली याद है, बिकॉज वी डिड नॉट जस्ट डेकोरेट द क्लासरूम, हमने अपने हाथों से सेलिब्रेशन बनाया था। वाह वाह, क्या बात कह दी तुमने अंतरा। इसी बात पे 90s वाला म्यूजिकल बनता है दोस्त, लेट्स गो।

0: दिस इंडियन इंडिपेंडेंस डे एक कहानी जो हर हिंदुस्तानी के दिल को छू जाएगी।
1: कौन सी आजादी और किसका मुल्क?
0: एक घर, दो मजहब।
2: आप यहाँ नहीं रह सकते।
3: मैं कितनी जाना, ये मेरा घर है।
0: हर बंटवारे के बीच कुछ रिश्ते सरहदों से बड़े होते हैं।
4: वो माँ है, माँ माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए।
0: बंटवारा 1947 स्टारिंग सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी एंड मोर। रिलीजिंग 14th अगस्त आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क सिंगापुर।
5: 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, 10।
6: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
0: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now pumping up your Thursday evenings 5 p.m. onwards. Catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
1: रस्सी यहाँ पे खिंची नहीं होती थी कि हम सब ऑटोमेटिकली ऊपर देखने लगते थे। वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 पर, मैं हूँ अंतरा आपके साथ और यहाँ पर चल रहा है क्या मस्ती 90s मिक्सटेप। भाई 15 अगस्त की स्कूल मेमोरीज में एक मोमेंट ऐसा भी था जिसके लिए किसी टीचर को कहना नहीं पड़ता था कि पे अटेंशन क्लास, हम ऑटोमेटिकली चुप हो जाते थे। स्कूल ग्राउंड में पूरी असेंबली में सारे बच्चे खड़े हुए हैं, टीचर साइड में खड़े हुए हैं, प्रिंसिपल या चीफ गेस्ट जो है फ्लैग पोल के पास खड़े होते थे और हम सबकी नज़र बस ऊपर झंडे पर होती थी, उस तिरंगे पर होती थी। फिर वो रस्सी खींची जाती और एक सेकेंड का वेट और जैसे ही तिरंगा खुलता था ऊपर से वो फूलों की पंखुड़ियाँ गिरती थी। एक बार मुझे ये मौका मिला है और बड़ी बड़ी ही शान की बात मानी जाती थी इफ़ यू आर इन दैट फ्लैग टीम, कि आपको जिम्मेदारी दी गई है कि फ्लैग में ऐसे करके जो है पेटल्स भरने हैं और उसको ऐसे फोल्ड करना है और ऐसे करके इसको रस्सी से बांधना है सो दैट वी कैन पुट इट अप। क्या मोमेंट होता था वो यार, हम सारे बच्चे नीचे खड़े, गर्दनें सारी की सब के सब ऊपर देख रहे हैं और वो पेटल्स हवा में घूमते हुए नीचे आ रहे हैं, कोई अपनी हथेली पर कैच करने की कोशिश कर रहा है, कोई बालू में से फूल अगर अटक गया वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा है, कोई नीचे गिरा हुआ पेटल क्वाइटली उठाकर पॉकेट में रख रहा है। फिर सडनली वहीं पर आफ्टर द फ्लैग होइस्टिंग जन गण मन बिल्कुल शुरू हो जाता और जो क्लास 5 मिनट पहले तक लाइन में एक दूसरे को धक्का दे रही होती थी वो पूरी की पूरी क्लास एकदम स्टिल, नो टॉकिंग, नो किकलिंग, बस नेशनल एंथम। और हमें पता है तब शायद हमें इंडिपेंडेंस का हिस्ट्री, फ्रीडम की स्ट्रगल की कम्प्लेक्सिटी, इन सब की पूरी अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं थी। हम बच्चे थे लेकिन उस मोमेंट की इंपॉर्टेंस समझ आती थी। कुछ तो था जिसकी वजह से वो तिरंगा खुलते ही छाती के ना चेस्ट ऑटोमेटिकली थोड़ी स्ट्रेट हो जाया करती थी और नेशनल एंथम के ख़त्म होने के बाद वो कहते जय हिंद पूरे स्कूल ग्राउंड में वो क्या एको करता था। आज ग्रैंड फ्लैग सेरेमनीज देखी हैं, ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन भी देखे हुए हैं, लेकिन मेमोरी में जो पिक्चर परमानेंटली सेव है ना वो अब भी वही है। स्कूल का ग्राउंड, सुबह का आसमान, सफ़ेद यूनिफॉर्म में खड़े हम और ऊपर से गिरती हुई वो छोटी छोटी फूलों की पंखुड़ियाँ। कुछ मेमोरीज फोटोग्राफ नहीं होती फिर भी लाइफ टाइम के लिए फ्रेम हो जाती है। ये मेमोरी बस यूं ही दिल में हमारे हमेशा संजो कर रखने वाली है। नहीं, अगर आपको भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लगता है कि आप मेरी मेमोरी से इन बातों से रिलेट कर पा रहे हैं, मेक श्योर दैट यू राइट टू अस 9158963 और सुनते रहिए मस्ती 90s मिक्सटेप।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for

0: onlinecom California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana और भी बहुत सारे wholesome healthy options. बस log on कीजिए GGMartOnline.com.
1: GGMart, your personal grocer.

0: पेंसिल से कैसेट की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: अगस्त के स्कूल सेलिब्रेशंस की बात हो और मार्च पास प्रैक्टिस को हम भूल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है अंजलि? रेडियो बस्ती 24/7 लाइव पर मैं अंतराब के साथ और यहाँ पर चल रहा है बस्ती 90s मिक्स टेप। जी हाँ, 15 अगस्त को हम याद करते हुए उस दिन को 90s के टाइम पर, भाई अब है ही कुछ ऐसी खूबसूरत यादें, क्यों ना याद किया जाए। भाई इंडिपेंडेंस डे से कुछ दिन पहले जो है स्कूल का पीटी पीरियड बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाया करता था, याद आया आपको? पीटी सर या मैम जो है ग्राउंड के एक कोने में विसल रेडी और हम सब लाइन में लेफ्ट राइट लेफ्ट, और हमें लगता था कि भाई सारी मेहनत तो हमें इस धूप में तुम लोग करा रहे हो, और लकी कौन है वो जो ड्रम पे ट्र वो बिल्कुल साथ साथ में बजा रहे होते थे ना, मेरा 13 से यार हमको भी ड्रमिंग में आना चाहिए था। सो अब प्रॉब्लम ये थी कि लेफ्ट कौन सा और राइट कौन सा, नॉर्मल लाइफ में प्रैक्टिकल परफेक्टली सब कुछ पता था, लेकिन जैसे ही पीटी टीचर बोलते थे लेफ्ट, पता नहीं क्यों आधा ग्रुप राइट फुट आगे निकाल देता था, फिर तुरंत स्टॉप, एक साथ पैर उठाओ, लाइन सीधी रखो, हाथ शोल्डर तक आने चाहिए वो, और वो एक बच्चा जो हर बार सबसे लाइक हाफ सेकंड लेट हो ही जाए, फिर दोबारा लेफ्ट राइट लेफ्ट, और पीछे स्कूल बैंड की वो ड्रम बीट डंडर, उस बीट में पता नहीं क्या था यार, नॉर्मल स्कूल ग्राउंड भी एकदम सेरेमोनियल ऐसा लगने लगता था, और अगर आपको फ्रंट रो मिल गई है तो हो बाप रे बाप, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दुगनी हो जाया करती थी, तुम्हारे पीछे सब फॉलो करेंगे, अगर तुमने गलत पैर आगे बढ़ाया तो पीछे भी वही कर रहे होंगे। बस फिर हम ऐसे ही मार्च करते थे जैसे राजपथ तक जाना हो, यूनिफॉर्म प्रॉपर्ली टक्ड, शूज क्लीन, शोल्डर स्ट्रेट, आईज इन फ्रंट, एंड पीटी टीचर साइड से इंस्पेक्ट करते हुए। प्रैक्टिस में हम कितनी भी मस्ती करें लेकिन 15 अगस्त की एक्चुअल मॉर्निंग जैसे ही अनाउंसमेंट होती थी कि मार्च पास्ट कमेंस, सडनली सब सीरियस हो जाते थे, ड्रम बजता था, पैर जो है कदम एक साथ ग्राउंड पर पड़ते थे, और अपनी स्कूल टीम के साथ मार्च करते हुए एक अलग अजीब सी प्राउड फीलिंग आती थी। नहीं आज जिम में ट्रेनर बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, तो 90s वाला दिल क्वाइटली कहीं ना कहीं बोलता है बॉस ट्रेनिंग तो हमारी बहुत पहले हो चुकी है इस मामले में। हमने स्कूल ग्राउंड पर भी धूप में पीटी सर की विसल के नीचे लेफ्ट राइट लेफ्ट करके पूरा बचपन निकाला है। क्या ही बात कर रहे हो आप, कोऑर्डिनेशन की सब हो जाएगा, सब हो जाएगा सर। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर सब हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन साथ साथ में 90s के गाने, यस दैट्स राइट, चलते रहने चाहिए।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
2: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार बॉटल में खरीद रहे हैं।
4: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
5: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
2: एक और चीज 15 अगस्त के टाइम पे बहुत ही कॉमनली हुआ करती थी 90s में, एंड वी ऑल यूज टू बी काइंड ऑफ मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट, ईदर टू पार्टिसिपेट इन इट और टू वॉच इट अदरवाइज असेंबली में बैठकर। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतराब के साथ और यहाँ पे चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। 15 अगस्त के वो फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, दैट्स राइट। बस भाई कॉम्पिटिशन तो बच्चों का होता था, लेकिन असली असाइनमेंट मम्मी पापा को मिला करती थी। एक रात पहले घर में फुल प्रोडक्शन हाउस बना करता था, कोई व्हाइट कुर्ता ढूंढ रहा है, कोई कार्डबोर्ड का चश्मा बना रहा है, कहीं चार्ट पेपर से गांधी जी की टोपी तैयार हो रही है, और अगर आप भगत सिंह बने हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट मूछ तैयार की जा रही है। भाई मम्मी का काजल यूज आता था उस टाइम पे, और मम्मी बहुत ही केयरफुली उसमें आपकी मुस्टैश मूछें बनाया करती थी, और हम मिरर में खुद को देखकर ऑलरेडी कैरेक्टर में आ जाया करते थे। कोई रानी लक्ष्मीबाई बनकर स्कूल पहुंच रहा है, कोई यू नो टॉय स्वॉर्ड जो होती थी तलवारें, एंड उस टाइम पे कागज की तलवारें जो है बना करती थी, वो सिल्वर पेपर से जो है बिल्कुल बनाई जाती थी, और दुपट्टा प्रॉपरली सेट कर दिया जाता था, एक छोटा सा गुड्डा जो है वो दुपट्टे के साथ बांध दिया जाता था आपको, एंड घर से 10 बार इंस्ट्रक्शंस मिल चुकी है, तलवार भूल मत कहना, बहुत बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में। सो कोई गांधी जी, कोई सुभाष चंद्र बोस, कोई सरोजनी नायडू, और स्कूल के कॉरिडोर में अगर ऐसा देखो तो लगता था हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक के सारे चैप्टर्स किसी ने खोल दिए हो। रिसेस के लिए एक साथ बाहर आ गए हैं, फिर स्टेज पर जाकर वो 2-3 लाइंस जो घर पर 20,000 बार रिहर्स करी थी, माइक के सामने आते ही बत्ती गुल, बिल्कुल ब्लैंक। टीचर साइड से प्रॉम्प्ट कर रही होती है, मम्मी ऑडियंस से जो है लिप्स मूव करके डायलॉग्स कभी याद दिला रही है, हम समहाउ स्पीच कंप्लीट करके प्राउडली स्टेज से नीचे आते थे। लेकिन उस छोटी सी एक्टिविटी में एक बहुत ब्यूटीफुल सी चीज़ होती थी, हम हिस्ट्री के उन नामों को सिर्फ टेक्स्ट बुक में पढ़कर नहीं याद करते थे, एक दिन के लिए उनकी कहानी को थोड़ा सा जी रहे होते थे। तब सैक्रिफाइस जैसे वर्ड्स की डेप्थ शायद पूरी समझ में नहीं आई हो, लेकिन घर आकर भी वो कैप, वो मूछे, वो कॉस्ट्यूम उतारते हुए एक फीलिंग ज़रूर होती थी कि आज मैं किसी बहुत ही स्पेशल इंसान की कहानी लेकर स्कूल गया था या गई थी। और 90s के पेरेंट्स को भी क्रेडिट बनता है इसमें पूरी तरह से। लाइक अमेजोन अभी क्या है, मतलब कुछ भी ऐसा देखो तो नेक्स्ट डे डिलीवरी कर देता है, लेकिन इसके बिना भी यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स के बिना भी एक रात में भगत सिंह से रानी लक्ष्मीबाई तक सब रेडी कर देते थे है ना। क्या दिन थे वो यार, सच्ची में।

जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें। समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s मिक्सटेप विद आपकी 90s वाली अंतरा, थर्सडेज 11 AM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

हाँ जी भाई, 15 अगस्त की सुबह तो हमने स्कूल में याद कर ली, लेकिन स्कूल से आने के बाद क्या? उसके बाद भी भाई कहानी हमारी यूं ही आगे बढ़ते रहेगी। रेडियो बस्ती 24/7 लाइव पर अंतराब के साथ और यहाँ पर चल रहा है बस्ती 90s मिक्स टेप। भाई मैंने सोचा कि एक तो 15 अगस्त आने वाला है, दूसरा ये हमारा मस्ती 90s मिक्स टेप ऑनकोर जिस दिन आएगा उस दिन 15 अगस्त ही होगा। सो it was just perfect and I had so many thoughts to share with you guys. तो भाई स्कूल से घर आने के बाद का सीन जरा याद करिए। उस दोपहर को भी ना एक बहुत ही पर्टिकुलर मूड आप दे सकते हो। स्कूल से आए, अपनी सफेद यूनिफॉर्म चेंज की, वो छोटा सा तिरंगा शायद अभी भी टेबल पर आपने कहीं रखा है, मिठाई का टेस्ट अभी गया भी नहीं और ड्राइंग रूम में टीवी ऑन हो चुका होता था। 90s में 15 अगस्त की दोपहर का मतलब दूरदर्शन पर कल्चरल प्रोग्राम्स, पेट्रियोटिक गाने, स्पेशल टेलीकास्ट एंड कभी कोई पेट्रियोटिक मूवी। अब पता नहीं क्यों उस दिन टीवी पर मेरे देश की धरती कर चले हम फिदा और ए मेरे वतन के लोगों को सुनना नॉर्मल से बिल्कुल अलग ही फील होता था। कोई सोफा पर लेटा हुआ है, कोई लंच करते करते देख रहा है, पापा बीच में किसी हिस्टोरिकल रेफरेंस की एक्सप्लेनेशन भी देते थे कि तुमको पता है, और यू नो हम कभी टीवी देख रहे हैं, कभी अपना छोटा सा फ्लैग लेकर इधर उधर घूम रहे हैं, और अगर दोपहर में कोई फेवरेट पेट्रियोटिक मूवी अनाउंस हो गई तो बस फिर तो भाई प्रोग्राम सेट। ना इसमें कोई वॉच लेटर, ना कोई रिकॉर्डिंग, ना OTT पर कल देख लेंगे, जो आ रहा है अभी देख रहा है वरना मिस हो जाएगा। उस वक्त टेलीविजन भी फेस्टिवल का पार्ट बन जाया करता था। दिवाली का अपना टीवी मोड, होली का अपना और 15 अगस्त का बिल्कुल अलग। स्क्रीन पर तिरंगा, देश के अलग अलग स्टेट्स के डांसर्स, आर्मी के विजुअल्स, पुराने पेट्रियोटिक गाने और पूरे घर में एक लेजी हॉलीडे आफ्टरनून वाली फीलिंग। बाहर गलियां हल्की सी शांत। स्कूल की सुबह वाली एक्साइटमेंट सेटल हो चुकी होती थी दोपहर तक और दिन धीरे धीरे रिलैक्स मोड में आ रहा होता था। आजकल कॉन्टेंट जो है देखने के लिए अनलिमिटेड है, जो चाहो जब चाहो देख सकते हैं, लेकिन 90s में कुछ प्रोग्राम्स हम चूज नहीं करते थे, ओकेजन हमारे लिए चूज किया करता था। और इसीलिए 15 अगस्त सिर्फ कैलेंडर की हॉलिडे नहीं लगती, सुबह स्कूल ग्राउंड से लेकर दोपहर के ड्राइंग रूम तक पूरा दिन एक ही फीलिंग में रैप्ड अप होता था, वो पेट्रियोटिज्म की फीलिंग में रैप्ड अप, जो कि हमें शायद इतना क्लियरली समझ में भी नहीं आता था, लेकिन हम उसे महसूस किया करते थे पूरे दिल से।

0: दिस इंडियन इंडिपेंडेंस डे एक कहानी जो हर हिंदुस्तानी के दिल को छू जाएगी।
1: कौन सी आजादी और किसका मुल्क?
0: एक घर, दो मजहब।
2: आप यहाँ नहीं रह सकते।
3: मैं कितनी जाना, ये मेरा घर है।
0: हर बंटवारे के बीच कुछ रिश्ते सरहदों से बड़े होते हैं।
4: वो माँ है, माँ माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए।
0: बंटवारा 1947 स्टारिंग सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी एंड मोर। रिलीजिंग 14th अगस्त आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क सिंगापुर।
5: Shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
6: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
2: '90s में 15 अगस्त आने का पता सिर्फ कैलेंडर से नहीं चलता था दोस्त, कलर्स से चल जाता था। कैसे, चलिए बताती हूँ। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मस्ती 90s मिक्स टेप। भाई ऑरेंज, व्हाइट, ग्रीन सडनली हर जगह पर। स्कूल में तो 14 अगस्त को ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हो जाती थी कि क्लास के बेस्ट हैंडराइटिंग वाले बच्चे की टीचर बोलती थी कल के लिए बोर्ड का डेकोरेशन कर देना। बस उस बच्चे का स्टेटस जो है इंस्टेंटली चीफ क्रिएटिव ऑफिसर वाला। कलर्ड चौक निकली नहीं, सबसे ऊपर बड़े बड़े लेटर्स में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, साइड में ऑरेंज व्हाइट ग्रीन बॉर्डर्स, फ्लैग्स बना दिए, कुछ फ्लावर्स बना दिए। और फिर आता था सबसे डिफिकल्ट असाइनमेंट, अशोक चक्र बनाने का। सर्कल परफेक्ट बनाना ही मुश्किल हो जाता था, ऊपर से उसके अंदर 24 स्पोक्स बनाने हैं, सो कहीं 21 कहीं 27, लेकिन कॉन्फिडेंस फुल, हाँ हो गया हो गया हो गया। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग क्लास में एंटर करते वही एवरीडे का ब्लैक बोर्ड, सडनली फेस्टिव सा लगने लगता। और सिर्फ स्कूल नहीं, घर पहुंचकर एक और एवरीडे चीज बदी हुई मिलती थी, न्यूज़पेपर। 15 अगस्त का न्यूज़पेपर याद है आपको? उस दिन फ्रंट पेज देखते ही पता चल जाता था कि आज नॉर्मल सा दिन नहीं है, कहीं यू नो देयर वाज स्ट्राइक कलर ऑफ कोर्स, देयर कहीं स्पेशल इंडिपेंडेंस डे के सप्लीमेंट आए हुए हैं, फ्रीडम फाइटर्स की फोटोग्राफ्स, इंडिया की जर्नी पर आर्टिकल्स और ब्रांड्स के फुल पेज पेट्रियोटिक के एडवर्टाइजमेंट्स। पापा न्यूज़पेपर पढ़ते जब थे और हम पेजेस पलट पलट कर पिक्चर्स देख रहे होते थे क्योंकि इतना कलरफुल लगता था, राइट? एक्चुअली 90s में फेस्टिवल्स और स्पेशल डेज की ये खूबसूरत सी तो बात थी ही कि एवरीडे ऑब्जेक्ट्स भी सेलिब्रेशन का हिस्सा बन जाया करते थे। वही क्लासरूम बस बोर्ड बदल गया, वही न्यूज़पेपर बस कलर्स बदल गए, और सडनली पूरा दिन स्पेशल सा लगने लगा। आजकल जो है स्क्रीन पर ग्राफिक्स है एक सेकेंड में चेंज हो जाते हैं, लेकिन मुझे वो चौक से बना टेढ़ा मेढ़ा अशोक चक्र और सुबह दरवाजे पे पड़ा हुआ वो ट्राई कलर वाला न्यूज़पेपर आज भी ज्यादा क्लियरली याद है, बिकॉज 90s में 15 अगस्त से सेलिब्रेट नहीं किया हमने, थोड़ा थोड़ा करके हर जगह उसको जिया है हमने। एंड दैट इज वाई आज भी जैसे ही 15 अगस्त की बात आती है किसी से भी बात करती हूँ तो यार लड्डू की याद आ रही है। बूंदी के लड्डू। स्टे ट्यून्ड।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space, Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

कसल से कसत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। ओके, लेट मी स्केच अनदर पिक्चर फॉर यू 15 अगस्त का रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर और मस्ती 90s मिक्स टेप पर। स्कूल फंक्शन खत्म, घर आ गए, लेकिन सेलिब्रेशन वो अभी कहाँ खत्म हुई है। बस अब बारी थी कॉलोनी यानी कि मोहल्ले की तैयारियों की। हम बच्चों की पर्सनल इंडिपेंडेंस डे के परेड की एंट्री फी बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी। एक साइकिल और हैंडल पर लगा हुआ वो छोटा सा तिरंगा, बस फिर क्या। दो तीन दोस्त इकट्ठा हुए, साइकिल्स निकली, पूरी कॉलोनी का राउंड मारते थे। स्पीड थोड़ी एक्स्ट्रा रहती थी, बेल ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग और हैंडल पर वो छोटा सा फ्लैग जो है हवा में यूं फ्लटर करता हुआ। उस वक्त फील ऐसी होती थी जैसे ऑफिशियल इंडिपेंडेंस डे कॉन्वॉय हम ही लीड कर रहे हैं। और वैसे भी 15 अगस्त को अपनी रेगुलर कॉलोनी भी मिनी इवेंट के जैसे वेन्यू बन जाया करती थी। पार्क या कॉमन एरिया में प्लास्टिक की चेयर्स लग रही हैं, आगे टेबल पर सफेद शीट, माइक के वायर्स पता नहीं कहां कहां से क्रॉस कर रहे हैं, स्पीकर का टेस्टिंग चल रहा है और कॉलोनी के वो एंथुजियास्टिक अंकल्स जो उस दिन सडनली ऑर्गेनाइजर, साउंड इंजीनियर, चीफ गेस्ट कोऑर्डिनेटर सब कुछ बन जाया करते थे। एक अंकल चेयर्स अरेंज करवा रहे हैं, दूसरे फ्लैग पोल चेक कर रहे हैं, कोई बच्चों को बोल रहा है कि इधर मत भागो, तार है यहाँ पर, एंड ऑब्वियसली हम वही भाग रहे होते थे। दैट वाज सपोज्ड टू बी डन लाइक दैट। आंटीज एक तरफ बातें कर रही हैं, बच्चों का अपना गैंग बना हुआ है, किसी के हाथ में फ्लैग है, किसी की साइकिल डेकोरेटेड है, कोई प्रोग्राम में जो है कविता सुनाने वाला है और किसी को बस पता करना है रिफ्रेशमेंट किधर रखा है, क्या क्या इंतजाम किया गया है। सो इट वॉजंट सम मैसिव सेलिब्रेशन, लेकिन पूरा मोहल्ला जो है एक जगह आ जाता था। वही लोग जिन्हें रोज बालकनी, लिफ्ट या गली में हम देखा करते थे, उस दिन सब एक जगह पे खड़े होते थे और शायद 90s के 15 अगस्त की ब्यूटी ही वही थी। सेलिब्रेशन सिर्फ स्कूल या टीवी पर नहीं थी, अपनी गली भी उस दिन थोड़ी सी तिरंगे वाली उजाड़िया करती थी और हम साइकिल पर छोटा सा फ्लैग लगाकर उस पूरे सेलिब्रेशन के सेल्फ अपॉइंटेड VIP गेस्ट्स खुद ही को घोषित कर देते थे। स्टेडियम रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। आई नो ये यादें इतनी खूबसूरत है कि इनको इस बस चलते रहना देना चाहिए ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन बस थोड़ी देर और रहेगा आपका मेरा साथ। स्टे विद मी।

0: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
1: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
2: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: दिस इंडियन इंडिपेंडेंस डे एक कहानी जो हर हिंदुस्तानी के दिल को छू जाएगी।
4: कौन सी आजादी और किसका मुल्क?
3: एक घर, दो मजहब।
5: आप यहाँ नहीं रह सकते।
6: मैं कितने नहीं जाना, ये मेरा घर है।
3: हर बंटवारे के बीच कुछ रिश्ते सरहदों से बड़े होते हैं।
7: वो माँ है, माँ, माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए।
3: बंटवारा 1947, स्टारिंग सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी एंड मोर। रिलीजिंग 14 अगस्त आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क सिंगापुर।
8: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
9: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
10: हाँ जी, हाँ जी, इसी बात के साथ दैट इज राइट। आज के मस्ती माय 90s मिक्सटेप का वक्त भी ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म हो ही गया। और आज ना जाते जाते गाने से ज़्यादा एक फीलिंग साथ लेकर जाना चाहती हूँ। मस्ती 90s मिक्सटेप आप सुन रहे हो, मैं हूँ 90s वाली अंतरा आपके साथ। बचपन में 15 अगस्त का मतलब कितना सिंपल था ना, सफ़ेद यूनिफॉर्म, सीने पर वो छोटा सा फ्लैग लगाना पेपर वाला, स्कूल ग्राउंड, फूलों की वो पंखुड़ियाँ, बूंदी का लड्डू, मोहल्ले के लाउड स्पीकर से आते हुए पेट्रियाटिक गाने, साइकिल के हैंडल पर लगाया हुआ वो एक फ्लैग। तब हमें फ्रीडम की कीमत शायद उतनी डीपली नहीं समझ में आती थी। हिस्ट्री की डेट एग्जाम्स के लिए हम याद किया करते थे, फ्रीडम फाइटर्स के नाम टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा करते थे, और 15 अगस्त का इंतजार सेलिब्रेशन और हॉलिडे दोनों के लिए होता था। लेकिन अजीब बात है ना, जैसे जैसे हम बड़े हुए उस दिन का मतलब भी हमारे साथ बड़ा होता गया। आज समझ आता है इतना दूर रहते हैं हम लोग हिंदुस्तान से, यहाँ पर जिस तिरंगा को हम बचपन में शर्ट पर सेफ्टी पिन से लगाकर प्राउडली घुमा करते थे, उसके पीछे कितनी कहानियां हैं, कितने सपने, कितने सैक्रिफाइसेस और कितने लोग जिनकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी, अपनी चॉइसेस, अपनी आवाज़ के साथ जी पाते हैं। और हम 90s वालों की एक और बहुत खूबसूरत सी बात है, हम दुनिया में कहीं भी चले गए हों, सिंगापुर, लंदन, न्यूयॉर्क या इंडिया के किसी भी कोने में हो, 15 अगस्त के आसपास अगर दूर से भी कोई पुराना पेट्रियोटिक गाना सुनाई दे जाता है ना, दिल को घर का एड्रेस ऑटोमेटिकली याद आ जाता है। सडनली हम फिर वही बच्चे बन जाते हैं, स्कूल के ग्राउंड में खड़े हुए आसमान की तरफ देख रहे हैं और तिरंगे से फूल गिर रहे हैं। मे बी दैट्स व्हाट नॉस्टैल्जिया रियली इज। वक्त आगे चला जाता है लेकिन दिल के अंदर कुछ जगह कभी पुरानी नहीं होती, है ना। मैं हूँ आरजे अंतरा, आपकी 90s वाली। आज के मस्ती 90s मिक्स टेप से बस इतना ही। अपनी यादों का संभाल कर रखिए, अपनी आज़ादी को अप्रिशिएट कीजिए और दिल के किसी कोने में उस छोटे से 90s वाले बच्चे को भी जिंदा रखिए जो हाथ में तिरंगा लेकर बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन के बस इतना जानता था, ये मेरा देश है और मुझे इससे प्यार है। जय हिंद। मिलते हैं अगले मस्ती 90s मिक्स टेप पे। Bye and take care. And yes, अगर आप Encore आज की डेट में सुन रहे हैं तो फिर a very very happy Independence Day.

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: आएंगे
1: न करण अर्जुन आएंगे न ही आरजेएस आएंगे, फिर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे
2: पुरुष ही नहीं महापुरुष है महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
3: कुछ पुरानी धुनें, कुछ भूली बिसरी यादें,
4: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान,
3: कोई आवाज कोई साज, सिनेमा की दुनिया के किस्से, रुलाते हंसाते उदासी भरे खिलखिलाते किस्से, समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर।

0: हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
0: चेक इट

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.
2: गाना चाहिए? आप बोलो हम बनाएंगे. चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, All is well. आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती. व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर. मस्ती वॉइस आपकी चॉइस.
3: Only on Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
4: Check it out.
5: न करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे. मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे.

0: नाचने का मन है,
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
3: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन। फ्रेशली ब्रूड बीट्स।

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: किसकी याद सताए जनाब, अकेलापन रात का तो हम है ना। रोज रात रेडियो मस्ती पर 11 बजे से। ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
1: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे। ट्यून इन टू
1: रात

0: आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
1: नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: As the sun rises, so does hope. Begin your day with devotion, harmony and positivity with the Devotional Hour on Radio Masti 24/7. Masti pe bhakti, subah 6 baje se. Take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Masti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
1: Only on Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
2: Check it out.
3: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे

0: दस का बीस।
1: अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters. Josh Mehra. Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats

अभी मौसमों का बदलना बाकी है, ओ साथी रे थोड़ा ठहर जा, कुछ दूर सा

0: आरजे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
3: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
2: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
3: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
4: जीजी
3: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
4: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।
5: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे?
6: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
7: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।

0: सत्याकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट।

0: Not all music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged, your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
1: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
2: मेरे करण अर्जुन आएंगे
0: ना? करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।
2: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: They are fresh. They are hot. They are happening. From rocking the charts to ruling the countdown. Yes, musty top 20. Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, the latest and the brightest. The week's top chart busters.
1: कौन रेणुका? कहाँ है रेणुका? मतलब कि ये जो थर्सडे शाम वाला माहौल है, टॉप चार्ट्स एंड रेणुका ओजी रॉकस्टार, कहाँ है ये? आप ढूंढ के मुझे बताओगे कहाँ है रेणुका, प्लीज मुझे बताया जाए. 5 बजे के उस पार, हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते, गुड इवनिंग. रेडियो मस्ती 24/7 पर, यहाँ पर जी हाँ, वक्त हो चला है और शुरू हो चुका है मस्ती टॉप चार्ट्स का सिलसिला. आई नो दैट ये टॉप चार्ट्स की कमान जो है हमारी ओजी रॉकस्टार रेणुका के हाथ में रहती है, लेकिन बीच बीच में मेरे हाथ में भी आ जाती है. और जब जब मेरे हाथ में ये कमाने आई हैं, और स्पेशली टॉप चार्ट की, तब तब मैंने इसको काफी हिला डुलू के एकदम शेकम शेक, वो जो गाना नहीं है ड्रीमम वेकअपम, ऐसा ड्रीमम वेकअपम कर दो कि अगली बार आके उनको लगे कि यार इसको तो नहीं देना है. मतलब किसी को भी दे देना है, लेकिन अंतरा को बिल्कुल नहीं देना है. But we are going to have fun. आज मैंने उतना shake up नहीं किया, लेकिन आज मैंने काफी सारे गानों को kick out जरूर कर दिया है. So well, आज एक ये journey, of course it is going to be absolutely very very entertaining and interesting because ये top charts होगा अंतरा style में. Well, मुझे दिख रहा है यहाँ पे number 20 पे आज ये आवारापन, यानी कि आवारापन 2 का ये गाना यहाँ पे कैसे, जब मैं पिछले से पिछले हफ्ते आई थी और मैंने ऐसे ही उनका शो किया हुआ था, मैंने इसको कितनी इज्जत दी हुई थी, है ना. आज देख रही हूँ फिर से इसको नंबर 20 पे, मैंने कहा चलो यार ठीक है, कोई बात नहीं, हमेशा ऐसे नहीं करना चाहिए, यू हैव टू पिक योर बैटल्स, सो लेट इट बी एट नंबर 20 दिस हफ्ते भी. लेकिन उसके बाद आएगा हमारा बॉलीवुड फ्लैशबैक एंड यू विल लव द बीच बीच में आने वाले गाने, I'm telling you. So, just stay tuned. ये है मस्ती टॉप चार्ट्स अंतरा के साथ on Radio Masti 24/7. गाना नंबर 1, बताओ बताओ कौन सा है, हिलाया मैंने कि नहीं हिलाया?
2: Radio Masti 24/7. Download Radio Masti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Trending song number 20.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Hollywood Flashback.

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: मिल गया मतलब अब मेरे हाथ लगा है वो टॉप चार्ज हो तो मिल गया क्या क्या नहीं मिलेगा ये बताओ, सब कुछ सर्व किया जाएगा. गुड इवनिंग रेडियो मस्ती 24/7. यस इट इज टॉप चार्ट्स टाइम. में टेंशन मतलब थर्सडे पर ही है हम, ठीक है, और कल है फ्राइडे, तो मजे ही मजे. वेल आज टॉप चार्ट्स में आपकी ओजी रॉकस्टार इज बिजी समवेयर एल्स. सो मतलब आपकी आज कल की मतलब टॉप आपकी सबसे फेवरेट रॉकस्टार जो है अंतरा यहां पर बिल्कुल हाजिरी लगा रही है. 5:17. अब बात कुछ ऐसी है लेडीज एंड जेंटलमैन कि आपने वो वाला शो तो देखा ही होगा कि चैन से सोना है तो जाग जाओ, है ना. देयर वाज दिस जो है उसके होस्ट हुआ करते थे कि बहुत ही फेमस थे, एंड स्पेशली वो फेमस इस वजह से थे क्योंकि उनका कहने का स्टाइल और बात करने का स्टाइल ऐसे इतना जोर जोर से जाग जाओ जाग जाओ. सच्ची में इंसान भाई, अगला बंदा जो टीवी देख रहा है वो तो जाग ही रहा है, चोर भी जाग रहा है कि भाई इससे पहले. एंड इट यूज टू बी अ रनिंग जोक बिटवीन अस कि भाई चोर भी देखते होंगे कि इस शो पे तो एक बार फीचर होना बनता ही बनता है. बट एनीवेज जोक्स अपार्ट, यहाँ पे सलमा कह रही है आज तुम्हारे हाथ लगा है ना वापस से 90s ही 90s लगा दो, आज टॉप चार्ट्स 90s का ही कर देते हैं. अब मुझे लगता है सलमा आई हैव टू टेक योर सजेशन वेरी वेरी सीरियसली, अब मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा वेरी वेरी सून. बट वेल कमिंग बैक टू दिस खबर भाई, उसके बाद आए अनूप सोनी. अनूप सोनी ने काफी अच्छा अपना एक स्टोरी टेलिंग का माहौल बनाया, लेकिन धीरे धीरे करके हर किसी का एक एंड पॉइंट आता है. सो नाउ व्हेन अनूप सोनी जो रिटायर कर रहे हैं, टेक ओवर कौन कर रहा है, एंड यू विल नॉट बिलीव मी क्योंकि आई वाज नॉट एबल टू बिलीव, अजय द देवगन. ही इज ऑल सेट टू टेक ओवर क्राइम पेट्रोल की दुनिया, एंड आई एम श्योर दैट ही विल ब्रिंग हिज अपना स्टाइल एंड बस तेरी वैसा वाला स्टाइल एंड पर्सपेक्टिव टू द शो एज वेल. भाई अनूप सोनी हैज डन अ लॉट फॉर द शो, राइट, 11 साल जुड़े रहे, एंड ही सेड दैट ही इज अ बिग अजय देवगन फैन एंड इज कॉन्फिडेंट दैट अजय देवगन जो है अपना एक जो है फ्लेवर लाएंगे इस पूरे के पूरे शो में. सो लेट्स सी हाउ अजय देवगन डज इट, व्हाट इज ही थिंकिंग अबाउट इट. मैं तो एक ही चीज में खत्म हो जाती हूँ, अजय देवगन की आंखें देखी, उनकी आंखें नशीली टू द अनदर एक्सटेंट ऑल टुगेदर. बट वेल वापस चलते हैं टॉप चार्ट्स की इस दुनिया में. यस वापस तो जाना ही पड़ेगा. 19 और 18 कर रहा है आपका इंतजार. 19 में मैंने रखा है सेम क्योंकि ये गाना भी धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉप चार्ट से पहले निकल जाना चाहिए था, बट इट्स ओके. अपना चेहरा दिखा बाय द ऋषि वो तो है ही है, बट 18 पे कर दिया है मैंने एंट्री, वो भी ब्रांड न्यू. दिस इज अमेजिंग मूवी विच इज रिलीजिंग ऑन 14th विजन टू सिंगापुर जो है रिलीज करने वाले हैं बटवारा 1947, एंड देयर इज अ रोमांटिक ट्रैक इन दैट एंड इट इज कॉल्ड तबस्सुम. इट इज क्वाइट नाइस. यप सो लेट्स गो. आप सुन रहे मस्ती टॉप 20 अंशा के साथ.
0: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 19.
3: मेरी आंखें सोती हैं मगर ये दिल जागता है, मेरी प्यारी चलिया.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
1: This Indian Independence Day, एक कहानी जो हर हिंदुस्तानी के दिल को छू जाएगी।
3: कौन सी आजादी और किसका मुल्क?
1: एक घर, दो मजहब।
4: आप यहाँ नहीं रह सकते।
5: मैं कितने नहीं जाना, ये मेरा घर है।
1: हर बंटवारे के बीच कुछ रिश्ते सरहदों से बड़े होते हैं।
6: वो माँ है, माँ माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए।
1: बंटवारा 1947, स्टारिंग सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी एंड मोर। रिलीजिंग 14th अगस्त आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क सिंगापुर।
7: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 18।

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: Such a beautiful gana, isn't it? Tabassum naam hai is gaane ka. In fact, hamare ek listener bhi hai jinka naam Tabassum hai. I somehow find this word, this ye jo naam hai aur Tabassum bada khoobsurat sa lagta hai mujhe. Well, welcome back. Good evening. 5:30 baj chuke hain. Yahan par Musty Top Charts aap sun rahe hain. Abhi jo aapne suna, that was number 18 pe. Ji haan, brand new entry. But wara 1947 se bilkul entry marta hua. Ali Fazal pe actually ye pura gana jo hai picturized hai, and I am quite looking forward to this particular movie because I think it's also bringing a lot of our favorites together, right? Preeti Zinta, kitne time ke baad we are going to see her on screen, man. Seriously, there was this time I was crazy about her. And maine kahi baar bataya aapko, mera sabse pehla email ID, it was cute_preeti@jobi.com. And wo Preeti jo tha, wo, it was never normal wala Preeti. It was P-R-E-I-T-Y because I loved Preeti Zinta. So, well, bhai, haal hi mein Preeti Zinta jo hai, Bachchan sahab ke wo quiz show mein pahunchi, and kal hi mein bata rahi thi ki aisa hai, waisa hai, aisa karte hai. In fact, बच्चन साहब जो है उसी शो में कहते हैं कि अब ऐसा हो गया है कि मैंने 55 साल इस इंडस्ट्री में गुजारे हैं, इतना सारा काम किया है, लेकिन आजकल के बच्चे आते हैं और वो कहते हैं कि ये देखो, ये केबीसी वाले अंकल भाई, बड़ा वक्त हो गया कि किसी ने मुझे किसी फिल्म से एसोसिएट किया हो. आजकल के जो जनरेशन है वो मुझे केबीसी वाले अंकल से जानती है. हालांकि मैं उससे बहुत ज्यादा खुश हूं, बट ऑफकोर्स आपका पहला प्यार और आपका पहला पैशन जो होता है वो हमेशा उस जगह जो है बना ही रहता है, है ना, है ना. जैसे मेरा पहला प्यार 90s का. यस, मस्ती सॉन्ग ऑफ द आवर आने वाला है, और पता नहीं अपने आप ही हाथ चला गया मेरा ये वाला गाना सुनने का मूड सा हो रहा था, सो मैंने कहा कि व्हाई नॉट, मौका है, दस्तूर है, लगा देते हैं, है ना. आई एम श्योर दैट यू विल एंजॉय इट एज वेल, फॉलोड बाय अ शॉर्ट ब्रेक, एंड उसके पार नंबर 17 जो कर रहा है आपका इंतजार बनाए हुए है अपनी जगह, वेलकम टू द जंगल का टाइटल ट्रैक. गुड इवनिंग, सुनते रहिए मस्ती टॉप चार्ट्स, मैं हूं अंतरा आपके साथ.
0: It's time for Musty Song of the Hour. Song of the Hour.

0: दिस इंडियन इंडिपेंडेंस डे एक कहानी जो हर हिंदुस्तानी के दिल को छू जाएगी।
1: कौन सी आजादी और किसका मुल्क?
0: एक घर, दो मजहब।
2: आप यहाँ नहीं रह सकते।
3: मैं कितनी जाना, ये मेरा घर है।
0: हर बंटवारे के बीच कुछ रिश्ते सरहदों से बड़े होते हैं।
4: वो माँ है, माँ माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए।
0: बंटवारा 1947 स्टारिंग सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी एंड मोर। रिलीजिंग 14th अगस्त आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क्स सिंगापुर।
5: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
6: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 17।

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: ये मस्ती टॉप चार्ट का जंगल है मेरे दोस्त। ऐसे ऐसे गाने जो नॉर्मल दिनों पे हमको लगता है कि ये क्यों, कहां, कब, कैसे, कोई और गाना लगाओ, बट वेल अब है तो यही है। वेल ट्रैफिक का अपडेट लेते हैं। 5:43 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। व्हीकल ब्रेकडाउन इस वक्त आपको मिलेगा TPE towards SLE after Tampines Avenue 10। एक एक्सीडेंट की खबर है ऑन PIE towards, अगर आप जा रहे हैं चांगी आफ्टर बुकेतमा रोड, अवॉइड करें लेन नंबर 1। और व्हीकल ब्रेकडाउन की खबर ऑन TPE towards SLE after Tampines Avenue 10। सो वेल ये था इस घंटे का ट्रैफिक का अपडेट। भाई पिछले से पिछले हफ्ते अगेन जिस बीच में, पिछले हफ्ते तो रेनुका आई थी, उससे पहले वाले हफ्ते में मैं आई थी जब मैंने काफी शफल कर दिया था ये पूरा का पूरा काउंटडाउन। और वहां पर जो ये चटनी वाला गाना है जो धमाल 4 का है, आई एम फ्रॉम यूपी, आई कंप्लीटली लव इट, बट द ओरिजिनल वर्जन एंड दैट वॉज इट। ठीक है, इसको मैंने काफी काफी पीछे डाल दिया था, बट अब मैंने इसको नंबर 16 पे इस बार रखा हुआ है। मेरे हिसाब से तो ये इस काउंटडाउन में होना भी नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करें, आपको तो पता ही है हमारे हाथ बंधे हुए हैं। कोई नहीं, 16 पे सुनिए चटनी। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स देयर इज अ ब्यूटीफुल बॉलीवुड का फ्लैशबैक व्हिच इज गोना हैपन, सो यू हैव टू वेट फॉर इट ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आप सुन रहे हैं मस्ती टॉप चार्ट्स, लेकिन आज एंथ्रा स्टाइल।
1: Trending song number 16.

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart योर पर्सनल ग्रोसर। Bollywood flashback.

0: hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: भाई लिसनर्स इतने ज्यादा स्मार्ट हो गए, मैं क्या ही बताऊं। यहाँ पे मेरे को सलमा लिख रही है कि ये तुमने 90s का तो चला दिया है, लेकिन घंटा भी पूरा होने वाला है, 90s नहीं कटना चाहिए अंतरा, 90s नहीं। नहीं नहीं सलमा, मैंने ना बहुत ही स्ट्रेटेजिकली एक ऐसा गाना प्लेस किया हुआ है घंटे के एकदम एंड में कि तुम मुझे पुचिया भेजोगे यहाँ पे, कि एकदम सही किया तुमने और बिल्कुल मैं सही काम ही करती हूँ एज ऑलवेज। रेडियो मस्ती 24/7 में अंतरा आपके साथ, मस्ती टॉप चार्ट्स आज अंतरा स्टाइल यहाँ पर चल रहा है, इसीलिए आपको काफी 90s के गाने सुनाई दे रहे हैं, बट उसके अलावा भी हम रेट्रो भी सुनेंगे यार। आज मूड जो है ना वो काफी ही अमेजिंग सा ताबड़तोड़ टाइप हो रखा है। सो वेल टॉप चार्ट्स में जो है बहुत ज्यादा कुछ मैंने हिलाया डुलाया नहीं है, बट देर आर अ लॉट ऑफ न्यू एंट्रीज दिस इस हफ्ते। सो मैंने अपन ने समझ के हिसाब से तो रख दिया है जो मुझे लगता है कि काफी, क्योंकि मैं ना बड़ी हैरान हो जाती हूँ कि ये गाना इधर क्या कर रहा है, इस गाने को तो इस लिस्ट में ही नहीं होना चाहिए था। बट ठीक है यार, हर शो की अपनी अपनी एक खूबसूरत बात होती है। बाय द वे हैविंग सेड दैट, ये आपने लेटेस्ट में सोहेल खान को देखा है? नहीं देखा है, यू हैव टू गो एंड टेक अ लुक एट हिम। व्हाट इज रॉन्ग, क्या हो गया है भाई को? आई मीन ओ माई गॉड, आई कुडंट बिलीव माई आईज व्हेन आई सॉ हिम। कभी ऐसा नहीं लगता भाई उसकी बॉडी पूरी बनी हुई है बट मुंह पे चक गया है, मतलब कुछ दवाई का साइड इफेक्ट हुआ है कि क्या है, बिकॉज ही इज बिहेविंग नॉर्मली, ही इज क्लिकिंग पिक्चर्स विद एवरीबडी, बट ही मतलब ऐसा है कि मेरा मतलब दिल चाहता है मोमेंट हो गया, नहीं तो वरना मैं मेरे पास रेस्ट ऑफ द वर्ड्स जो है आ नहीं रहे हैं उनको देखने के बाद। पता नहीं यार, इट्स ओके, आई थिंक इट इज व्हाट इट इज, बट समथिंग इज सीरियसली नॉट ओके विथ हिम, दैट इज फॉर श्योर। इसी बात के साथ इस घंटे को रैप अप करते हैं। सोहेल खान के भाई जो है वो ओरिजिनल इस गाने में नजर आए थे, लेकिन अब क्या ही है, अब है जवानी तो इश्क होना है, वरुण धवन ने की थी उसमें ये रिक्रिएट करके डाल दिया गाना, हमें अच्छा लगा नहीं लगा दैट इज नॉट द क्वेश्चन एट ऑल। नंबर 15 पर घंटे के एंड में है ना, कमाल की बात, मस्ती टॉप चार्ट्स।
0: Trending song, number 15.

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters. Josh Mera.
3: And that is an oh no, आज OG rockstar रेणुका यहाँ पर नहीं है, but आपकी most favorite अंतरा यहाँ पर definitely है। Well, ये है मस्ती टॉप चार्ट्स ऑन रेडियो मस्ती 24/7, 6 बजे के उस पर बिल्कुल हम लोग पहुंच चुके हैं। And yes, बड़ा ही पेचीदा सा जगह पे पहुंच गए थे जहां पे हमें वो गाना काटना था, इसीलिए हमने गाना जो है ना एकदम एंड पे लगाया कि जाते जाते जो है वो गाना भी उतना ही काफी था हमारे लिए। धीरे धीरे टॉप चार्ट्स में हम लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। एंड नंबर 14 पे लेट मी टेल यू एक ब्रांड न्यू ट्रैक आपका कर रहा है इंतजार। आई ना थोड़ी सी तो क्यूरियोसिटी आई ही। सो वेल, ये भी अब क्या ही कहे, एक रिक्रिएटेड वर्जन ही है एक गाने का, वो भी 90s वाले गाने का। आई थिंक आजकल लोग 90s से पीछे और भी नहीं जा रहे हैं, दे आर जस्ट गोइंग टू 90s और देख रहे हैं कौन सा गाना फ्री है, कौन सा गाना कर सकते हैं, कौन सा गाना रिक्रिएट करेंगे। भाई कुछ और थोड़ा सा ज्यादा कर देते तो फिर मतलब थोड़ी और क्रिएटिविटी, बट ठीक है अब हमें यही दिया जा रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बट हैविंग सेड दैट, ओके भाई, यहाँ पर अगर there is someone who is making rounds Bollywood की दुनिया and gossips की दुनिया में, that is none other than हमारी चीची की Mrs. चीची, जो कि अब तो हम उनको Mrs. चीची बिल्कुल नहीं बुला सकते क्योंकि अब गोविंदा जी जाने जाते हैं कि ये तो सुनीता जी के हस्बैंड जो है ना गोविंदा जी। It is, times have changed, tables have turned and for good or bad, I don't know, but this lady is out there and she is gonna conquer the world. I love her confidence. ठीक है, एक ऑरा है इस बंदी का। She has lived her life जैसे कि एक सेलिब्रिटी की बीवी अपना पर्सनल लाइफ को अलग रखना चाहिए, कभी किसी को पता नहीं चला कि गोविंदा की बीवी कौन है, एंड सडनली नाउ शी इज। बट अभी उन्होंने लेटेस्ट मसाला क्या डाला है मैं बता तो अभी देती, लेकिन कोई नहीं, थोड़ी देर और वेट कर लो, सारा का सारा मिर्च मसाला गॉसिप आपको जरूर मिलेगा। ये मस्ती टॉप चार्ट्स नंबर 14 पे। पहले ये भाई तेरा स्टार है मूवी से ब्रांड न्यू एंट्री हुआ, आंखों से तूने का 2.0 वर्जन, ये तो सुन लीजिए। नंबर 14 हाजिर हो। मैंने ठीक बोला? ओके लेट्स गो।
4: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 14।

0: दिस इंडियन इंडिपेंडेंस डे एक कहानी जो हर हिंदुस्तानी के दिल को छू जाएगी।
1: कौन सी आजादी और किसका मुल्क?
0: एक घर दो मजहब।
2: आप यहाँ नहीं रह सकते।
3: मैं कितने नहीं जाना, ये मेरा घर है।
0: हर बंटवारे के बीच कुछ रिश्ते सरहदों से बड़े होते हैं।
4: वो माँ है, माँ माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए।
0: बंटवारा 1947 स्टारिंग सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी एंड मोर। रिलीजिंग 14th अगस्त आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क सिंगापुर।
5: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
6: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
7: Trending song number 13.

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: It's 6:13 by the studio clock. आप सुन रहे मस्ती टॉप चार्ट्स ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आज चल रहा है ये अंतरा स्टाइल, एंड आई नो ये लोग सारे गानों को रिक्रिएट कर करके करते हुए जा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, ये भी सब हम सब संभाल लेंगे. थैंक गॉड फॉर ऑल दीज मस्ती सॉन्ग ऑफ द आवर एंड बॉलीवुड फ्लैशबैक जो बीच बीच में आते रहते हैं. हमें जो है लगता है कि ठीक है, सब ठीक है, ऑल इज वेल. बट वेल, यहाँ पर सीरीज रेकमेंड की जा रही है. मुझे पहले तो पूछा कि ये तुमने देखी भाई, तेरा स्टार है, ये ओटीटी पर रिलीज हो गई. सो आई हैव नॉट वॉच्ड इट, बट अपेरेंटली इट्स क्वाइट नाइस एंड एंटरटेनिंग. उसी के साथ साथ ऑपरेशन सफेद सागर के लिए भी मुझे रेकमेंड किया जा रहा है. आई हैव स्टार्टेड, बट आई एम ऑल्सो जेलस ऑफ पीपल हु कैन. आई लव बिंज वॉचिंग अ गुड सीरीज, ओके, और मतलब कि मौका नहीं लगता. और जो लोग कर पाते हैं, सही में बहुत ही लकी हो आप कि एक बार में आप पूरी सीरीज खत्म कर पा रहे हो. मेरा ऐसा इंस्टॉलमेंट चलता है कि वो एक ही चीज काफी लंबी खिंच जाती है. बट देन इट इज वेरी वेरी वेरी वेल मेड. अभी तक तो मुझे यही लग रहा है जितना मैंने देखा है ऑपरेशन सफेद सागर में. एंड इसी तरह से इफ यू आर वॉचिंग समथिंग, डू लेट मी नो. भाई, शेयरिंग इज केयरिंग, पता होना चाहिए ना कि कहाँ पे क्या चल रहा है. और कोई अच्छी सीरीज है तो डेफिनेटली उसको देखना बनता ही बनता है. सो वेल, आई वॉज गोइंग टू टेल यू अबाउट सुनीता आहूजा, जो आजकल अपने बेटे यशवर्धन को प्रमोट कर रही है. यस, यशवर्धन जो कि गोविंदा और सुनीता के बेटे हैं, एंड उनको एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस ने साइन किया हुआ है. ही इज एब्सोल्यूटली gearing up to be launched. But भाई, पपराजी जाती है तो पूछती एक ही है कि उस दिन एयरपोर्ट पे गोविंदा को हमने उनके साथ देखा था, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? सुनीता ने तो अब बोल दिया कि देखो, मुझसे ये सारे सवाल मत करो. अगर तो तुम्हें मेरे बेटे के लॉन्च के बारे में सवाल करने हैं, बस उसके बारे में मैं तुम्हें जवाब दूंगी. कोई यहां पर चीची की बात नहीं होगी, सिर्फ सुनीता और यशवर्धन, इन्हीं दोनों का नाम होगा, क्योंकि यही नाम आपको आगे जाकर भी सबसे ज्यादा सुनाई देगा, ना कि गोविंदा का. ओ नाइस, वेरी नाइस. आई एम टेलिंग यू, दिस गर्ल इज ऑन फायर. ओ माई गॉड. वेल, फिलहाल ये प्लेलिस्ट ऑल्सो इज गोइंग टू गो ऑन फायर, बिकॉज आई हैव गॉट अ वेरी वेरी गुड अमेजिंग रेट्रो नंबर. थर्सडे इवनिंग एकदम मन जाएगी, कमाल बेमिसाल. लेट्स गो फॉर इट ऑन रेडियो मस्ती 24/7. कमिंग अप इज मस्ती सॉन्ग ऑफ द आवर. बट सुन रहे हैं मस्ती टॉप चार्ट्स.
0: It's time for Musty Song of the Hour.

0: hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: मस्ती टॉप चार्ट्स यहाँ पर हम आगे बढ़ाते हुए लेकर जा रहे हैं और इससे पहले कि नंबर 11 और 10 यहाँ पर आ जाए, आइए आपको अगली खबर की तरफ लेकर जाए। भाई आई थिंक धीरे धीरे बॉलीवुड इज एंटरिंग दी ज़ॉम्बी एरा। मैंने कहा था ना आपसे, मैंने ही कहा था कि एक बार कोई शुरू करेगा और कोई ना कोई फॉलो करता हुआ और उसमें चीजें एड करता हुआ जाएगा। सो फिरोज नादियाद्वाला इज डेवलपिंग एक किड्स फ्रेंडली ज़ॉम्बी कॉमेडी। I don't know what is comedy in zombie and how it can be, because yeah, I'm not a very zombie friendly person. Let's put it that way. There are a lot of people who have really watched good zombie movies and they really appreciate it. इनके चाहने वाले अपने अलग हैं. So well, तो वो एक ऐसा kids friendly zombie comedy बनाने वाले हैं with Tiger Shroff and Anil Kapoor and Nana Patekar. इन तीनों को अप्रोच किया गया है टू ब्रिंग बैक अपना उदय मजनू का पेयरिंग। क्या बात कर रहे हो, सीरियसली? सो बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो है, कहा जा रहा है अभी स्टिल डेवलपमेंट फेज में है एंड इट्स बीइंग प्लान्ड एज अ फ्रेश फैमिली एंटरटेनर। इन इस डुओ का, यानी कि उदय मजनू हमारे अनिल कपूर नाना पाटेकर का जो कॉमिक केमिस्ट्री है, मीटिंग द कंप्लीटली न्यू ज़ॉम्बी कॉमेडी सेटअप, आई can not even picture this. कैसे करेंगे, कैसे होगा, but somehow they will pull it off. I mean, they are iconic for some reason, right? So bhai, waiting for this iconic mashup of zombie meeting Uday and Majnu bhai and what not that it can happen. Bhai, is baar gadha kahan chadh ke baithega? Those who know, they know. Well, coming up next is the number 11 par Rana Ji 2.0. followed by short break and number 10 pe intezar kar raha hai ek aur recreated gana. I mean dono hi recreated hai, but then it's okay. Let them stay wherever they are, right? Stay tuned.
0: Trending song number 11.

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
3: This Indian Independence Day, एक कहानी जो हर हिंदुस्तानी के दिल को छू जाएगी।
4: कौन सी आजादी और किसका मुल्क?
3: एक घर, दो मजहब।
5: आप यहाँ नहीं रह सकते।
6: मैं कितनी जाना, ये मेरा घर है।
3: हर बंटवारे के बीच कुछ रिश्ते सरहदों से बड़े होते हैं।
7: वो माँ है, माँ माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए।
3: बंटवारा 1947, स्टारिंग सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी एंड मोर। रिलीजिंग 14th अगस्त आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क्स सिंगापुर।
2: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 10।
0: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याल दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: Yes, it is Masti Top Charts, jo aap sun rahe hain Thrust Style on Radio Masti 24/7. But right now it's time for 6:37 traffic update ka. Is ghante mein kuch aisa milega aapko traffic. Heavy milega traffic on SLE towards CTE before Mandai Avenue. Vehicle breakdown ki khabar on PIE towards Changi after KJE. Aur milega heavy traffic in CTE tunnel towards AYE at Havelock Road exit. So well, ye tha to traffic ka update. Acha, ek sawal agar poochu to quickly aap bataoge mujhe uska jawab. दोगे मतलब आज की डेट में अगर अचानक से आपके फोन पे आता है सुनामी अलर्ट एंड आपको लगता है कि आज सब कुछ ही निपट ही जाएगा, व्हाट इज दैट वन थिंग, लाइक अभी के अभी कोई एक ऐसा अलर्ट आला है, व्हाट इज दैट वन थिंग यू वुड लाइक टू डू, क्या करना चाहोगे आप? आई हैव अ रियली इंटरेस्टिंग स्टोरी जो कि पूजा भट्ट ने बताई है कि वो उन्होंने क्या किया ऑलमोस्ट ऐसे ही एक सिचुएशन में, बट दैट विल बी आफ्टर दिस बॉलीवुड फ्लैशबैक वाला गाना, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने रंबा हो चलाया था, मेरा मूड कुछ ऐसा ही हो गया है कि कुछ माहौल इसी तरफ लेकर जाते हैं. सो हियर कम्स अनदर अमेजिंग अमेजिंग बॉलीवुड फ्लैशबैक पर ये वाला गाना, ओ माय गॉड, लव इट.
1: Bollywood flashback.

0: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: Ayana Maza, I tell you, these songs are so, so very good. Radio Musti 24/7, Musti Top Charts, yahan par chal raha hai, 6:44 ho chuke hai, studio clock mein, Bham hamare saath, all the way from Gujarat, join kar chuke hai. Bham, aaj Musti Top Charts jo hai, iska safar bilkul Antra style pe yahan par chal raha hai, isiliye beech beech mein is tarah ke gaane jo hai, aap isko enjoy kar rahe hai. Well, isse pehle ki hum Top Charts mein aur aage yahan par badhe, so I was going to tell you about this story. So Pooja Bhatt, hum sabhi jante hai, पूजा भट्ट को, तो शी वाज टेलिंग दिस स्टोरी कि ये उस टाइम की बात है जब पूजा भट्ट एंड डीनो मोरिया दोनों साथ में काम कर रहे थे. दे को प्रोड्यूस दिस मूवी कॉल्ड जिस्म 2, ओके, और रेकी करने के लिए ये पहुंचे फुकेत. अब फुकेत में इन्होंने एक बहुत ही स्वैंकी सा रिजॉर्ट बुक किया हुआ था, जहां पे इनका बुक था प्रेसिडेंशियल स्वीट. अब ये स्वीट था पहाड़ के ऊपर, रिजॉर्ट भी पहाड़ के ऊपर था, तो आपको नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा हाफ वे टू द रिसेप्शन एंड देन फ्रॉम रिसेप्शन टू द प्रेसिडेंशियल स्वीट. यानी हम बग्गी में इधर उधर जो है, हमारे होटल की जो स्टाफ, रिजॉर्ट की स्टाफ है, वो हमें दिखा रही थी कि ये विला है, वो विला है, एंड सडनली शी गेट्स द रिजॉर्ट स्टाफ गेट्स दिस कॉल एंड शी गोज इन टू पैनिक मोड. एंड वो कहती है कि अरे सुनामी अलर्ट, सुनामी अलर्ट. नाउ इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन पूजा भट्ट इंस्ट्रक्ट्स डीनो मोरिया कि भाई सुन, रिसेप्शन तक भाग के जा, भाग के रिसेप्शन में जो कन्वीनियंस स्टोर है, दो शैंपेन की चिल्ड बॉटल उठा, पिंक वाली है ना, बहुत ही स्पेसिफिक डायरेक्शंस सुनामी अलर्ट पर. और उसके बाद तो डीनो मोरिया वाज लाइक, ही रिएक्टेड लाइक कि आप ये वाला शैंपेन का बॉटल यहां से क्यों ले रही है, इट इज मच कॉस्टली ओवर हियर, आप यहां से मत लो. एंड पूजा भट्ट इज लाइक, You don't know, maybe we are going to die and all you can care about is yahan pe zyada mehengi milti hai. I mean, Pooja Bhatt ji, I think Dino Moria just kind of became each one of us. Hum marte dam tak hamare andar se wo jo hamari aadat hai na ki ye yahan pe nahi lete hain, duty free mein jaake lenge, wahan pe kam dam mein milegi. We cannot help it, we are designed like that so well. Ha, Pooja Bhatt wanted to have and actually Dino Moria got दो पिंक कलर की शैंपेन की चिल्ड बॉटल उनके लिए. सो वेल, दैट वॉज देयर प्लान. व्हाट्स योर प्लान? मेरा प्लान है कि मैं 9 और 8 ये दोनों आपकी तरफ भेज दूं. 9 तो यू विल लव, वी हैव ऑल लव दिस धुरंधर का गाना. आई थिंक इट्स ओरिजिनल, इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल काइंड ऑफ अ सॉन्ग. एंड 8 पर अगेन अ रिक्रिएटेड वर्जन. सो लेट्स गो, लेट्स लिसन टू देम एंड कम बैक ऑन मस्ती टॉप चार्ट्स.
0: Trending song, number 9.

0: आप सही गाना बनाओ लोगों के दिलों तक जरूर पहुंचता है. एंड यू विल नॉट बिलीव व्हाट जस्ट हैपेंड. ओके, गहरा हुआ गाना चल रहा है, इसका एक पोर्शन है मैं हूं तेरा. ओके, एंड ये एक ही लाइन मैं हूं तेरा इतना लिखकर आई हैव गॉट एटलीस्ट मतलब काफी सारे मैसेजेस एक साथ आए हैं. एवरीबडी लव्स दैट पार्ट एंड भाम हेयर हैज रियली हेल्प्ड अस अंडरस्टैंड के ये जो है इतना इसका टच वॉइस टच कातिलाना है. इट इज ऑन राग भीम पलासी पे बेस्ड एंड इट्स जस्ट ब्यूटिफुल. सही चीज बनाओ तो क्यों नहीं लोग अप्रिशिएट करेंगे, है ना. लेट्स गो फॉर अ ब्रेक, सुनते रहिए मस्ती टॉप चार्ट्स.
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ.
2: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ.
2: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर.
3: जीजी
2: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com. प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस. बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com.
3: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर.
4: दिस इंडियन इंडिपेंडेंस डे एक कहानी जो हर हिंदुस्तानी के दिल को छू जाएगी.
5: कौन सी आजादी और किसका मुल्क?
4: एक घर दो मजहब.
6: आप यहाँ नहीं रह सकते.
7: मैं कितने नहीं जाना, ये मेरा घर है.
4: हर बंटवारे के बीच कुछ रिश्ते सरहदों से बड़े होते हैं.
8: वो माँ है, माँ माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए.
4: बंटवारा 1947 स्टारिंग सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी एंड मोर. रिलीजिंग 14th August आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू. ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क सिंगापुर.
0: ये ट्रेलर अभी चल रहा था तो याद आया ये कहने के लिए कि कभी नहीं सोचा था मैंने अपनी जिंदगी में कि मैं सनी देओल के साथ रिलेट कर पाऊंगी कम्प्लीटली. रेडियो मस्ती 24/7 यस मस्ती टॉप चार्ट्स चल रहा है लेकिन अल्ट्रा स्टाइल में. आपको पता है सनी देओल जो है उन्होंने हाल ही में ये बात रिवील की, ही 68 ईयर्स ओल्ड. ओके, एंड यू नो जब भी हम 90s के एक्टर्स वगैरह की बात करते हैं, यस वी टॉक अबाउट सनी देओल एंड तारीख पे तारीख एंड एवरीथिंग, बट मैंने कभी ऐसा नहीं कहा होगा कि मैं अच्छा लगता है बहुत ही ज्यादा एंड रिलेट कर पाती हूँ एंड ऑल दोस थिंग्स. बट देन रिसेंटली ही रिवील्ड दैट भाई वो सुबह के 5:30 बजे उठते, 1.5 घंटा कसरत करते हैं एंड उसके बाद वो उनको कहा जाता है कि एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करो. कहते हैं मुझे कहा तो रोज जाता है लेकिन समहाउ ही एंड्स अप एंजॉयिंग समोसास एंड देसी घी के पराठे. भाई इसके सामने वो गिव अप मर जाते हैं. लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अब मेरा सिंपल फंडा हो गया है भाई, अपने आप को हेल्दी रखना है, रोज थोड़ी ना थोड़ी कोई ना कोई किसी टाइप की मूवमेंट करती रहनी है, एक्सरसाइज रोज करना है, लेकिन अपने मन का खाना भी साथ साथ में खाते रहना है. सो नाउ आई डू नॉट फोकस अबाउट कि भाई मेरे को बहुत ही पतला दुबला होना है, आई फोकस अबाउट कि भाई मुझे हेल्दी रहना है. एंड दैट्स हाउ आई रिलेट टू हिम कंप्लीटली, क्योंकि मैंने जब अपना फोकस बदला अपनी जिंदगी का कि नहीं हमारा फोकस ही गलत था. ठीक है, रोज का मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज द नीड ऑफ द आवर. So, फिर तब मेरा हो गया कि नहीं भाई, जैसे आज भी जैसे ही खत्म होगा ये हम यहां से निकलेगा एकदम आज के मूवमेंट के लिए. फिलहाल मूव करते हैं अगले गाने में, नंबर 8 पे कमिंग अप फॉर यू इज ऊंचा लंबा कद, या जो होना चाहिए था लेकिन ठीक है ये कद से भी हम अच्छा खासा काम चला रहे हैं. एंड यस मिलते हैं उसके बाद घंटे के उस पार ऑन रेडियो मस्ती 24/7 चल रहा मस्ती टॉप चार्ट्स. यू स्टे ट्यून्ड.
3: Trending song, number 8.

0: The charts are two ruling the countdown. ये है मस्ती टॉप 20. Now pumping up your Thursday evenings 5 PM onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters. जोश में रहो.
1: नहीं, मैं ये जरूर चलने दे रही हूँ वो इस वजह से क्योंकि सबको लगता है कि भाई थर्सडे है, थर्सडे की शाम है, अभी तो रेणुका ऑन एयर होगी, लेकिन कहाँ है रेणुका? पर आई वॉन्ट यू टू फाइंड आउट कहाँ है रेणुका इंस्टेड ऑफ मी टेलिंग यू, क्योंकि मैं भी आपसे ही पूछ रही हूँ कहाँ है रेणुका, क्यों नहीं है यहाँ पे रेणुका. सो जब आपको पता चल जाए तो मुझे बता दें 9151896 3 पर. फिलहाल 5 बजे से अभी 7 बजे के उस पार पहुंच चुके हैं मस्ती टॉप चार्ट्स जो है काउंटडाउन धीरे धीरे चलते हुए जा रहे हैं. आज के दिन में मैंने उलट पलट बहुत ज्यादा इस काउंटडाउन में नहीं किया है, बट व्हाट आई एम एंजॉयिंग इज कि मैंने काफी सारे गाने जो है ना किक आउट कर दिए हैं. नई नई एंट्रियां जो है वो कर दी है, और उसी के साथ साथ ये बीच बीच में जो गाने आ रहे हैं ना उनकी कमान अपने हाथ में ऐसे एकदम दिल से पकड़ी हुई है ना कि मैं क्या ही बताऊं. एंड आई एम श्योर दैट यू आर एंजॉयिंग ईच एंड एवरी वन, aren't you? Aren't you? So well, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे सनी पाजी की विद द देसी घी के परौठे एंड द you know samosa and the everything, and he was actually talking about Batwara 1947 ke isme abhi promotions chal rahe, right? So he was telling all of these things, and I am quite looking forward to this particular movie, not only because of him, I think for Shabana Azmi also I want to. Ali Fazal mujhe bahut pasand hai as an actor, uske liye bhi. Also at the same time, hamare Sunny Deol ke bete, Karan Deol jo hai, wo apne papa ke saath for the very first time he's going to share the screen space. So it's going to be really, really interesting. Trailer bahut hi kamal ka hai, and it got me in various, various kind of points. So well, 14th August ko release ho rahi है, अपनी टिकट्स जो है जरूर बुक कराएं. सिंगापुर में आइलैंड वाइड रिलीज होगी, ऑल थैंक्स टू विजन दिस सिंगापुर. ये बहुत ही बेहतरीन मूवी 15 अगस्त से जस्ट पहले लाने के लिए, आई थिंक इट्स जस्ट द परफेक्ट थिंग टू वॉच, राइट? सो दिस आई हैव गिवन यू, आई एम गोइंग टू डू इट. एंड बाकी और क्या देने वाली हूं, ब्रांड न्यू ट्रैक मस्ती टॉप चार्ट्स में नंबर 7 में एकदम ब्रांड न्यू एंट्री मारता हुआ शान ने एक पॉप गाना गाया है. आई मीन इंडी गाना गाना उन्होंने काफी टाइम से बंद कर दिया था, ही वॉज सो पॉपुलर फॉर दैट, बट यस इट्स कॉल्ड दिलदारा. एंड मुझे लगा कि भाई शान की शान बनी रहनी चाहिए, इसीलिए मैंने इनको सीधा 7 पे ला कर खड़ा कर दिया एकदम ब्रांड न्यू एंट्री पे, फॉलोड बाय अगेन मस्ती सॉन्ग ऑफ द आवर विच इज सो ब्यूटिफुल, यू आर गोइंग टू लव इट. सो वेट फॉर इट, स्टे ट्यून्ड.
2: हिट अस ऑन द ग्राम. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
3: Check it out.
4: Trending song, number 7.

0: दिस इंडियन इंडिपेंडेंस डे एक कहानी जो हर हिंदुस्तानी के दिल को छू जाएगी।
1: कौन सी आजादी और किसका मुल्क?
0: एक घर, दो मजहब।
2: आप यहाँ नहीं रह सकते।
3: मैं कितने नहीं जाना, ये मेरा घर है।
0: हर बंटवारे के बीच कुछ रिश्ते सरहदों से बड़े होते हैं।
4: वो माँ है, माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए।
0: बंटवारा 1947 स्टारिंग सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी एंड मोर। रिलीजिंग 14th अगस्त आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क्स सिंगापुर।
5: Musty Song of the Hour.

0: hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: क्या गाना है यार, सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों ने कहीं रत जगे, कहीं कब लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे अपना दिल में. ओ माय गॉड, आई कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट इट एंड विद इट कंप्लीटली. रेडियो मस्ती 24/7. जी हाँ, आई नो, मतलब फील आपको मिक्स टेप की आई, बट चल रहा है मस्ती टॉप चार्ट्स. देखो सुबह मैं बेचारी लड़की मिक्स टेप करके उठी ही थी कि उसको टॉप चार्ट्स की गद्दी में बैठा दिया, तो थोड़ा बहुत जो है ये मर्ज होना, आई थिंक वी ऑल आर काइंड enjoying it, right? So, 7:00 हो चुके हैं 12 मिनट यहाँ पर. टॉप चार्ट्स में बिल्कुल हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मैं जो कह रही हूँ, फ्रॉम शाहरुख खान टू आमिर खान. भाई हमारे पेरेंट्स कहा करते थे बेटा सीएस कर लो, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी. देर वॉज अ रीजन बिहाइंड दैट. तब हमें समझ में नहीं आता था, एटलीस्ट मुझे तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आया, क्योंकि मुझे किताबें ही और इतनी पढ़ाई नहीं समझ में आती थी कि भाई इतना कैसे पढ़ लेंगे. और सीएससीएस के लिए तो बहुत ही ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत ही सिंसियरिटी के साथ, जो हमारे सिलेबस में ही नहीं था. सो वेल एनीवेज, हुआ कुछ ऐसा कि भाई आमिर खान बता रहे थे कि देयर इज वन पर्सन इन हिज लाइफ जो अगर वो चाहे वो किसी भी वक्त आमिर खान को कंगाल करके वहां से निकल जा सकता है, एंड आमिर खान को पता भी नहीं चलेगा. सो ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज सीए. कहते हैं बिमल पारेख नाम का एक इंसान है मेरी जिंदगी में, जो मेरा सीए है, वो मेरी सौतेली माँ है. देखो माँ है क्योंकि वो मेरी फिक्र करता है, मेरे पैसों की फिक्र करता है, बट सौतेली इसलिए क्योंकि वो मुझे टॉर्चर भी करता है. मेरा पैसा कौन सी चीज कहाँ पे है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, आई हैव नो आइडिया, बट देन माई सीए नोज इट ऑल. सो अगर वो चाहे वो मुझे 2 सेकेंड में कंगाल कर दे, एंड आई विल हैव एब्सोल्युटली नथिंग टू प्रूव कुछ भी कि वो लेके गया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया. आई मीन या कर लेना चाहिए था, थोड़ी पढ़ाई ही तो करनी थी. अब तो मतलब हाँ, अब सोच के क्या होगा, अब तो तुम जो कर रही हो अंतरा, तुम वही कर सकती हो. एंड नंबर 6 पर साड़ी जो है बिल्कुल धमाल फोर्सिंग. गाना खुल नहीं रहा है, फ्राइडे कल है, फॉलोड बाय एक बॉलीवुड फ्लैशबैक, बिल्कुल हमारे स्टाइल में ऑन रेडियो मस्ती 24/7. सुनते रहिए मस्ती टॉप चार्ट.
0: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 6.

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: ऐसा दिल खुश हो जाता है ना जब आपकी तरफ से आता है कॉम्प्लीमेंट. कोई भी खुश हो जाएगा यार, ऐसी चीजें होती है और मैं तो बिल्कुल दिल से एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है. 7:23 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में, रेडियो मस्ती 24/7. मैं अंतरा आपके साथ. आज मस्ती टॉप चार्ट्स मेरे स्टाइल में चल रहा है और निकिता यहाँ पे लिख रही है, आज तो रेट्रो सॉन्ग सभी एक से बढ़कर एक, थरली एंजॉयिंग एंड अ लॉट ऑफ अदर पीपल ऑल्सो हैव सेड द सेम थिंग एंड आई एम लविंग इट कम्प्लीटली. मुझे बहुत ही ज्यादा शानदार फील हो रहा है. चलो इसी बात पे, ज्ञान का आदान प्रदान करता है. अब आपने इतना खूबसूरत सा कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे, इतनी अच्छी अच्छी बातें करी, तो मैं आपको आजकल के जेंजीज टर्म्स में से एक और टर्म सिखाती हूँ जो मैंने भी बहुत ही रिसेंटली डिस्कवर किया है एंड आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड. सो लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको स्कल वाला इमोजी और डॉल्फिन वाला इमोजी. स्कल वाला इमोजी इज बेसिकली जस्ट रिविजन ऑफ द प्रीवियस चैप्टर. स्कल वाला इमोजी मतलब अगर आपकी इतनी हंसी आ रही है आपको कि आपकी स्किन ही उड़ के बाहर चली जाए तो सिर्फ आपका स्कल स्कल रह जाता है, ठीक है. तो बहुत तेज एकदम पागलों जैसी हंसी आने वाली हो तो स्कल भेज सकते हो, और ऐसे ही वाली हंसी हंसनी हो तो फिर वो आप डॉल्फिन वाला इमोजी भेज सकते हो. नाउ देयर इज अ टर्म कॉल्ड एयरपोर्ट डिवोर्स. आप कहोगे अब ये क्या है नया चीज. नाउ लेट मी एक्सप्लेन. ओके, एयरपोर्ट डिवोर्स कुछ ऐसा है कि जब आप और आपके पार्टनर एयरपोर्ट पहुंचते तो आप साथ में हो, लेकिन आप जो है टाइप ए के हो और आपके पार्टनर टाइप बी के हो, विच इज यूजुअली नॉर्मल. ऐसे ही लोग प्यार में पड़ते हैं. टाइप ए और टाइप बी कुछ ऐसा है कि आपका टाइप ये है कि आप जब अंदर घुसोगे तो आपको ड्यूटी फ्री के शॉप्स देखने हैं, इधर उधर करना है, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, फिर जाके फूड कोर्ट में डोसा भी खाना है. सो दैट इज वन टाइप. द अदर टाइप इज कि नहीं, 3 घंटा पहले ही जाकर गेट पर बिल्कुल टेंट वेंट लगा के वहीं पे बैठ जाएंगे, बहुत ऑर्गेनाइज रहेंगे और ये सारी चीजें चलेगी. जब ऐसे दो लोग एक दूसरे के साथ नहीं चल पाते हैं एयरपोर्ट में तो वो कर लेते हैं एयरपोर्ट डिवोर्स, विच मींस द मोमेंट वो अंदर चेक इन करने के बाद अपनी राहें अलग अलग कर लेते हैं. एंड देन दे मीट वेयर, अपने सीट्स पे इन द फ्लाइट. उतना पूरा दौरान दे आर अंडर एयरपोर्ट डिवोर्स. कैन यू इमेजिन? आई कैन नॉट. हेलो, व्हाट आर दीज टर्मिनोलॉजीज यू आर इन्वेंटिंग? I am not getting anything about it, but then मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा, सच्ची बात बताओ तो. साथ साथ में नंबर 5 पर रूप दी और रानी दुपर रंधे को संभालनी, recreated version one more time, and yes, followed by another musty song of the hour. So you stay tuned, don't go anywhere. Musty top charts चल रहा है अल्ट्रा के साथ.
0: Trending song number 5.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behnor bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
1: Not all music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile, hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged, your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
3: It's time for
4: Masti Song of the Hour.
3: Song of the Hour.

0: के बाद आती हूँ, कहती मस्ती टॉप चार्ट चल रहे हैं, लेकिन मस्ती टॉप चार्ट में ये गाने क्यों चल रहे हैं? क्योंकि बीच बीच में ये भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत. आई थिंक वी सर्वाइव बिकॉज ऑफ दीज गानास, डोंट यू थिंक सो? एटलीस्ट आई थिंक सो. बट वेल, आई एम विद यू, आई एम विद यू कम्प्लीटली ऑन इट. 7:37 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में. एंड भाई हर चीज के पीछे ना इतने ज्यादा, जब बॉलीवुड में मूवीज बनती है इतनी पीक डिटेलिंग पे हर कोई ही जाता है, एंड एवरीबडी हैज देयर ओन काइंड ऑफ डिटेलिंग दे गो फॉर. अब इसमें ही ले लो, विद्या बालन डिड सच अ फैंटास्टिक जॉब जब उन्होंने की थी परिणीता, राइट? वी ऑल लव्ड इट, loved it. उनका जो किरदार था एंड एवरीथिंग, एंड परिणीता एक्चुअली चेंज्ड हर होल जो इंडस्ट्री में उनका एक चल रहा था ग्राफ, उसमें एक बहुत ही अलग पड़ाव. इट्स अ माइलस्टोन मूवी फॉर हर. सो शी वाज टेलिंग समवन कि भाई जो डायरेक्टर साहब है वो उनके मेंटर साहब भी हैं, एंड ही वाज सो स्ट्रिक्ट विद एवरी सिंगल थिंग कि अगर उनको एक शॉट में कोई चीज पर्टिकुलर चाहिए तो वो चाहिए ही चाहिए. सो देयर वाज दिस बहुत ही इमोशनल सीन बिटवीन संजय दत्त एंड हमारी विद्या बालन, एंड इट्स अ सॉन्ग पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है, एंड विद्या बालन हैज टू क्राई इन दैट. सो बेसिकली डायरेक्टर साहब चाहते थे कि एक सॉन्ग के एक धुन एक पॉइंट पे जब वो म्यूजिक आए तभी टप से आंख से आंसू गिरने चाहिए. उस चक्कर में करते करते करते करते 28 टेक्स हो गए. विद्या बालन कह रही है कि 10-12 टेक्स के बाद, 10-12 टेक्स तक तो मैं बहुत रोई, नॉर्मल अपने आप से ही नेचुरली रोई. 10-12 टेक्स के बाद मेरे नेचुरल आंसू खत्म हो गए, मेरा चेहरा सूजा हुआ, मेरी आग सूजी हुई, लेकिन हमारा जो है शॉट जो है वो परफेक्ट आ ही नहीं रहा है क्योंकि वो सही टाइम पे आंसू नहीं टपक रहा है उसी वक्त में. सो परफेक्शन के पीछे भागते हुए डायरेक्टर साहब और इधर मेकअप दादा आते हैं और कहते हैं कि ठीक है चलो अभी मैं ग्लिसरिन डाल देता हूं, तुम इसमें से रो. 28 टेक्स, यस, 12 के बाद इतने बाकी टेक्स में ग्लिसरिन डलाए आंखों में. फिर आए डायरेक्टर साहब बिल्कुल दंदनाते हुए, बहुत ही गुस्से में कि क्या चल रहा है और इसके आंखें क्यों सूजी हुई है, इसका मुंह क्यों सूज गया है, क्या हो गया है. तो भाई मेकअप दादा आते हैं कि सर आपने तो बोला था कि भाई ग्लिसरिन डाल डाल के अब ये ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा, व्हाट डू यू वांट, क्या है ग्लिसरिन, इतना क्या हो गया, ऐसी क्या आंखें सूज गई है. सो व्हाट मेकअप दादा डिड, मेकअप दादा गए और उन्होंने डायरेक्टर साहब की आंखों में ग्लिसरिन डाल के बताया कि ये होती है ग्लिसरिन. और जो डायरेक्टर साहब कूदे हैं नाचे हैं जलन के मारे अपनी आंखों में, एंड देन ही कामड डाउन एंड ही वाज लाइक ओके दिस इज हाउ इट फील्स टू हैव ग्लिसरिन इन माय आईज, ठीक है कोई बात नहीं, अगले टेक में जो है कोई परफेक्शन की ठीक है, आई विल मैनेज माई सेल्फ. 28 टेक्स, बट देन इट इज व्हाट इट इज. मेंटर और स्टूडेंट की कहानी, विद्या बालन की और मेरी जबानी, वाह वाह, नंबर 4 पे. इसी वजह से एकदम ब्रांड न्यू एंट्री मारता हुआ टॉक्सिक मूवी का गाना जो कर देगा आपको मदहोश, गाना से सो.
1: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 4.

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: You're tuned into Radio Musty 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
3: हांजी हांजी, वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 में. अंतरा यहाँ पर आपके साथ, ऑफ कोर्स मस्ती टॉप चार्ट्स जो है यहाँ पर चल रहा है. एंड गेस व्हाट भाई, हमारे सलमान खान हैज बैग्ड अ न्यू प्रोजेक्ट. इनफैक्ट जो है इनकी मातृभूमि मूवी के बारे में बीच में हल्की सी हवा आई थी और उसके बाद वापस से वो हवा ही हो गई. अब कोई बात नहीं कर रहा है. बट वेल, सलमान खान इज बैक. एंड हाउ भाई, Raj and DK, who they are known for their very, very good series with Shahid Kapoor, they have done, and unke action sequence aur ye sari cheezon ko lekar ye kafi jaane aur maane jaate hain. But haal hi mein inhone lock kiya hai Family Man, jo hai inke creators Raj and DK ne, ki apni next film ye late 2026 mein jiski shooting start hogi, they are going to do with Salman Khan. Interesting. To well, matlab aisa nahi hai ki sirf bura hua hu, जान अभी भी बाकी है, कहा था ना दंगल में. सो आई थिंक ही इज गोइंग टू कम बैक. बट आई थिंक मेरे को पर्सनली लगता है कि सलमान खान को अब अपनी एज रिलेटेड जो है रोल्स वो ज्यादा करने चाहिए. जितनी जल्दी ये एक्सेप्टेंस आ जाए ना लोगों को, उतनी ज्यादा ही वो जिंदगी थोड़ी सी बेहतर लगने लगती है. नहीं, आपको नहीं लगता? मुझे यही लगता है. यही एक्सेप्टेंस थोड़ी टाइम पहले आ जाती तो इनकी करियर की गाड़ी शायद बेटर चलती. बट हु एम आई टू कमेंट ऑन दिस. आई एम श्योर दैट दे ऑल आर थिंकिंग अबाउट इट. एंड या, वी कैन ओनली सिट वेट एंड वॉच फॉर व्हाट सलमान खान ब्रिंग्स अप नेक्स्ट फॉर अस. व्हाट आई कैन टेल यू इज, नंबर दो पर आई कैन ब्रिंग यू कॉकटेल टू का ये वाला गाना, क्योंकि तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो. अब कितनी बार भी रिक्रिएट करो, मतलब तो यही रहेगा. लेट्स गो.
0: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर टू.

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: कृषि वाल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart योर पर्सनल ग्रोसर।
3: दिस इंडियन इंडिपेंडेंस डे एक कहानी जो हर हिंदुस्तानी के दिल को छू जाएगी।
4: कौन सी आजादी और किसका मुल्क?
3: एक घर, दो मजहब।
5: आप यहाँ नहीं रह सकते।
6: मैं कितनी जाना, ये मेरा घर है।
3: हर बंटवारे के बीच कुछ रिश्ते सरहदों से बड़े होते हैं।
7: वो माँ है, माँ माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए।
3: बंटवारा 1947, स्टारिंग सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी एंड मोर। रिलीजिंग 14th अगस्त आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क सिंगापुर।
0: Well, quick check before I leave you with gana number one on Masti Top Charts, जो कि आज रहा अंतरा स्टाइल में on Radio Masti 24/7, कि ये जो है हमारे 14th of August को बिल्कुल कल के डेट में रिलीज होने वाला है बंटवारा 1947, विजन दिस सिंगापुर जो है वो बिल्कुल आइलैंड वाइड रिलीज कर रहे हैं। सो वेल, यू हैव टू गो एंड वॉच दिस वन। एंड इसी के साथ वॉच मी, नहीं मतलब वॉच मी इज सेंडिंग यू टू गाना नंबर वन, माशू का स्टेज। एंड यस, इट इज दैट गाना, एंड ये रहना चाहिए, ये गाना डिजर्व करता है इस नंबर एक पे रहने का ऑन मस्ती टॉप चार्ट्स, क्योंकि इट हैज दिस क्वालिटी ऑफ ग्रोइंग अप ऑन यू। सो वेल, let it grow and grow really really nicely on you. आप कहीं पे भी इधर उधर घूम रहे होंगे ना, अचानक से आप गाने लगोगे mama mashu ka, it just gets you. It did not get me initially, but eventually I was like, ये मैं क्यों गा रही हूँ? But फिर मुझे पता चल गया कि मुझे इस गाने को एक नंबर से इसी वजह से नहीं हटाना चाहिए। तो ये था आज के मस्ती टॉप चार्ट्स का सफर, लेकिन अब मैं यहाँ से एग्जिट मारूंगी। कल सुबह वापस से आपके साथ मुलाकात होगी, क्योंकि कल है फ्राइडे एंड मस्ती मैटर्स वाला दिन। सो वेल, yeah, that is that. So tab tak ke liye, you have a great and amazing night ahead. Gana number one, Masti Top Charts. Here you go. Bye bye. Take care. Good night.
2: Trending song.
8: Check it out. Number one.

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

वेलकम टू डियर मस्ती दिल से। जी हाँ, आप सभी का यहाँ पर आज के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में स्वागत करते हुए बिल्कुल मैं इंतजार कर रही थी कि कब होगा वो वक्त शुरू। मैं आंत्रा यहाँ पर आपके साथ रेडियो मस्ती 24/7 पर। पता है, आज शो शुरू करते हुए ये एक थॉट जो है वो जहन में था कि हम अपने आप से जिस तरह बात करते हैं, क्या हम कभी किसी अपने से उस तरह बात करेंगे? Think about it. Friend से कोई गलती हो जाए तो हम कहते हैं कि यार it's okay यार, होता है, don't be so hard on yourself, कहाँ है ना। और वही गलती कभी हमसे हो जाए, मुझसे कुछ ठीक से क्यों नहीं होता? कोई अपना tired हो, so we always suggest and advise, take some rest, you need it, इतना काम करते हो। जब हम खुद tired होते हैं, नहीं नहीं अभी time नहीं है, बहुत काम है, बाद में देखा जाएगा। किसी दोस्त का हार्ट ब्रेक हो तो वी ऑलवेज से गिव योरसेल्फ टाइम। अपना हार्ट ब्रेक हो बस इनफ, अब के बाद नहीं, मूव ऑन। इंटरेस्टिंग है ना, बस यही सोच रहे थे हम। दुनिया के लिए हमारे पास कंपैशन बहुत होता है, बस कभी कभी खुद तक पहुंचते पहुंचते वो खत्म हो जाता है। और साइकोलॉजी में एक ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट है, इट्स कॉल्ड सेल्फ कंपैशन। बहुत सिंपल सा मतलब है इसका, जब लाइफ डिफिकल्ट हो तो खुद को भी वही काइंडनेस देना जो आप नेचुरली किसी अपने को देते हैं। और नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी हर गलती को जस्टिफाई कर दो। गलती हुई है तो एक्सेप्ट करो, सीखो, करेक्ट करो, बस उस प्रोसेस में खुद के दुश्मन नहीं बन जाओ। बिकॉज समटाइम्स द पर्सन हु नीड्स योर अंडरस्टैंडिंग द मोस्ट इज यू। And on that thought, welcome everyone again to Dear Masti Dil Se on Radio Masti 24/7. Antra bilkul yahan pe jud gayi hai aapke saath, and dheere dheere jo hai hamari Nupur and Renuka bhi aapke letters ke saath yahan pe judte hue jayenge, aur saath mein koi aur bhi judega. Wo janne ke liye hamare saath yun hi bane rahe, and let's start the silsila of hamare Dear Masti ke un chittiyon ka jo aap itni प्यार से और इतने ट्रस्ट के साथ हम

वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. मैं अंशरा यहाँ पर आपके साथ. एंड यस, चलिए अपनी आज की पहली चिट्ठी की ओर जो है वो बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. डियर मस्ती, मैं एक 3 साल के बच्चे की मम्मी हूँ एंड ऑनेस्टली आई एम सो डन. घर बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मुझे लगता है कि मैं सब कुछ अकेले ही कर रही हूँ. हम न्यूक्लियर फैमिली है और मेरे हस्बैंड को फ्रीक्वेंटली इंडिया जाना पड़ता है अपने पेरेंट्स के पास. आई अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट दैट, बट इवेंचुअली एवरीथिंग हियर फॉल्स ऑन मी. अब ना पेशेंस बची है ना एनर्जी. कभी कभी बस मन करता है कि कहीं चली जाओ. नो किड, नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नो बडी अराउंड मी, बस थोड़ी देर सांस ले लूं. और फिर गिल्ट होता है कि एक माँ होकर मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ. Is all of this even worth it? Oh, okay. My dear listener, आपके लेटर की वो एक लाइन, बस कहीं जाकर सांस लेना चाहती हूँ. I completely felt it. Because sometimes that's exactly what overwhelm sounds like. Not that I don't love my child, I don't want my family. It's just that I am tired of being needed every single minute. और मुझे लगता है कि मदर्स के साथ हमने एक बहुत ही अनफेयर सी चीज नॉर्मलाइज कर दी है. एंड आई एम श्योर दैट यू वुड अग्री विद मी ऑन दिस एंड अ लॉट ऑफ अदर पीपल हु आर ट्यून्ड इन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कि माँ हो इतना तो करना पड़ेगा. ऑफकोर्स करना पड़ेगा, बट कितना और कितने टाइम तक बिना किसी ब्रेक के. रिसर्च देखी मैंने आपका लेटर पढ़ने के बाद. WHO के अकॉर्डिंग चाइल्ड बर्थ के बाद अप टू 1 in 5 विमेन पोस्ट नेटल डिप्रेशन या एंजाइटी एक्सपीरियंस करती हैं. और रिसर्च बार बार ये भी दिखा रही है कि पार्टनर, फैमिली और फ्रेंड्स से इनसफिशियंट सपोर्ट डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस के हायर रिस्क से एसोसिएटेड है. मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि ऐसा कुछ है अभी. Of course, I'm not a doctor and एक लेटर पढ़कर ऐसा कहना ठीक भी नहीं होगा. But what I'm saying is that मम्मी यानी मदर्स के मेंटल लोड को सीरियसली लेना बहुत ज्यादा जरूरी है. बिकॉज पेरेंटिंग सिर्फ डायपर चेंज करना, खाना बनाना और स्कूल ड्रॉप करना तो बिल्कुल भी नहीं है. इट्स कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑल द टाइम, प्लानिंग, वॉचिंग, वरिंग, डिसाइडिंग, बींग अवेलेबल 24/7. और जब दूसरा पेरेंट फिजिकली अवेलेबल नहीं है, वो वर्कलोड और भी हैवी फील हो सकता है. इसीलिए अगर कभी किसी मम्मी के मुंह से निकले कि मुझे बस कुछ दिन अकेला रहना है, तो शायद इमीडिएटली ये कहने के बजाय कि भाई कैसी माँ हो तुम, एक बार जरूर पूछना चाहिए नहीं कि ओ माय गॉड शी इज रियली टायर्ड. बिकॉज समटाइम्स शी डजंट नीड जजमेंट, शी नीड समबडी टू टेक द चाइल्ड एंड से तू जा, मैं हूं, थोड़ी देर सांस ले ले. सो माय डियर लिसनर, आपका सवाल था इज इट ऑल वर्थ इट, और आपकी सिचुएशन में एक्चुअली क्या चेंज किया जा सकता है. आई एम स्टिल थिंकिंग एंड आई वॉन्ट टू गिव एन ऑनेस्ट आंसर टू यू. सो आई विल कम बैक आफ्टर दिस म्यूजिकल ब्रेक एंड लेट यू नो. ऑलराइट, यू स्टे ट्यून्ड टू डियर मस्ती दिल से.

वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। थोड़ी देर पहले हमारे एक डियर लिसनर का लेटर आया था, मैं हूं अनुराग के साथ, और उन्होंने लिखा था दैट आई एम अ मॉम ऑफ अ 3-year-old बॉय। उनकी एक न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड को फ्रीक्वेंटली इंडिया जाना पड़ता है पेरेंट्स के पास, और पीछे घर, बच्चा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेंटल लोड, सब कुछ उनके शोल्डर्स पर आ जाता है। एंड बड़ी ही ऑनेस्टली शी रोट to us that I have no patience, no energy, I just want to go somewhere alone and breathe. Is all of this even worth it? So my dear listener, मैं आपके letter का answer एक सवाल से देना चाहती हूँ। आखिरी बार आपने बिना किसी की responsibility दिए सिर्फ अपने आप के लिए कुछ कब किया था? And yes, please, grocery shopping doesn't count in that. बच्चा स्कूल गया और आपने लॉन्ड्री कर ली, doesn't count. बच्चा सो गया और आपने किचन क्लीन कर दिया, वो भी ब्रेक नहीं है। I mean genuinely, सिर्फ आप। पता है मुझे क्या लगता है कि अक्सर इन सिचुएशंस में जब पढ़ते हैं तो लोग भागना शुरू कर देते हैं अपनी इस सिचुएशन से। आपको थोड़ी देर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऑफ ड्यूटी होना है, एंड दैट्स ऑल। एंड देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। आप अपने हस्बैंड की सिचुएशन अंडरस्टैंड करती हैं, एंड दैट्स वंडरफुल। उनके पेरेंट्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। लेकिन माय डियर लिसनर, अंडरस्टैंडिंग कैन नॉट ऑलवेज बी वन वे, राइट? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंपॉर्टेंट है, तो आपका टायर्ड होना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सबसे पहले तो हस्बैंड के साथ हैव अ प्रॉपर कॉन्वर्सेशन, नॉट व्हेन यू आर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड एंड एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड, किसी रिलेटिवली काम वर्क पर। इन कॉन्वर्सेशन की तुम मुझे अकेला छोड़ देते हो, डोंट स्टार्ट विद दैट। मे बी समथिंग लाइक दिस दैट आई नीड यू टू अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट कोपिंग वेल विद द करंट अरेंजमेंट। हमें मिलकर इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। एंड देन गेट स्पेसिफिक, यू नो, कि बेड टाइम यू कैन टेक ओवर समथिंग, वीकेंड मॉर्निंग्स यू कैन गिव मी सम टाइम, बाथ टाइम, ग्रोसरीज। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी होनी चाहिए जो आपको सुपरवाइज ना करनी पड़े। बिकॉज अगर काम उन्होंने किया और इंस्ट्रक्शंस, रिमाइंडर्स, प्लानिंग सब आपने की, तो मेंटल लोड अभी भी आपका उतना ही है, देयर इज नो डिफरेंस। और जब वो इंडिया जाते हैं, talk about, let's look out for some help, cleaner, babysitter for a few hours, trusted friend or family member, kaun hai, kya hai, even if it is once a week, help luxury nahi hoti jab aap drowning sa feel kar rahe ho, and ye ek chota sa non-negotiable time apne liye zarur zarur rakhiye, maybe Saturday ko 2 ghante, just go out, have coffee, catch up with your friends, get your hair done, go to salon, sit in a park, ya होटल बुक करके भी भागने की जरूरत नहीं है। पहले आई थिंक जस्ट 2 घंटे से शुरू करिए, एंड उस वक्त ये गिल्ट में नहीं आए कि मेरा बच्चा पता नहीं कैसे क्या कर रहा होगा, ना ही ये सिखाने की अपने हस्बैंड को कोशिश करिए कि भाई तुमने ये ठीक नहीं किया होगा या नहीं किया, एंड ऑल दोस थिंग्स। ही इज एन अडल्ट, ही कैन टेक केयर, ही इज एज मच पेरेंट एज यू आर। योर चाइल्ड इज स्लेव एंड यू आर अलाउड टू रेस्ट। टेल योरसेल्फ दैट एंड गो एंड टेक दैट ब्रेक। You really need that breather, and you should and you must take that breather. Just talk it out. Very, very, very important. I hope really, really it helps. And if it does, and if you really, you know, pehli jab aap rahat ki saans lo aur aapko agar hamari yaad aaye, please feel free to write to us on Dear Masti Dil Se.

You know what I absolutely love about this show? That is the music. जी हाँ, जो गाने चलते हैं, जो पॉजिटिविटी फैलाते हैं और जो स्माइल लेकर आते हैं हम सबकी शक्ल पे. वेल, देयर इज नथिंग बेटर देन दैट, राइट? हेलो हेलो, सही पहचाना आपने. मेरा नाम रेणुका है और अब मेरी बारी आ चुकी है ऑन डियर मस्ती दिल से. डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है. बिल्कुल, और इस अनजाने इंसान की बारी जो आई है तो इसको चिट्ठी भी बहुत भारी आई है. Hi Renuka, I need your advice because something happened recently that's really upset me. I'm a part of a close group of friends. One of them asked me, did everyone else go out for drinks yesterday? Was I the only one who wasn't invited? I honestly didn't think much of it. I simply said, I think the organizer invited everyone except you, maybe because you don't drink. There was no gossip, no bad intention. I was just answering the question I was asked. लेकिन अगले दिन इसने कन्फ्रंट कर लिया ऑर्गेनाइजर को और पूछा कि किसने बताया. जब सबने पूछा ये बात तो मेरा नाम आ गया एंड सम ऑफ द ग्रुप नाउ इज कॉलिंग मी अ स्निच. ऑनेस्टली इफ आई हैड नोन माय सिंपल आंसर वुड क्रिएट सो मच ड्रामा आई वुड हैव नेवर सेड एनीथिंग. अब मुझे बहुत अजीब लग रहा है अराउंड एवरीवन. डिड आई डू समथिंग रॉन्ग और वाज आई जस्ट बीइंग ऑनेस्ट? दोस्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग, देखिए ये सब तो चलता रहता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि भाई दोस्ती आसानी से नहीं मिलती है और सच्ची दोस्ती तो आज के ज़माने में वैसे भी बड़ी ही मुश्किल से मिलती है. तो चलो यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और वापस आके आपकी इस परेशानी का हल आपको बताते हैं. खीखे की आवाज में शायद आपको अच्छा लगेगा. Let's take a short musical break and I'll be back very soon. Radio Masti 24/7 पर चल रहा है डियर मस्ती दिल से.

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
0: क्रिशीवल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: दिस इंडियन इंडिपेंडेंस डे एक कहानी जो हर हिंदुस्तानी के दिल को छू जाएगी।
4: कौन सी आजादी और किसका मुल्क?
3: एक घर, दो मजहब।
5: आप यहाँ नहीं रह सकते।
6: मैं कितने नहीं जाना, ये मेरा घर है।
3: हर बंटवारे के बीच कुछ रिश्ते सरहदों से बड़े होते हैं।
7: वो माँ है, माँ, माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए।
3: बंटवारा 1947, स्टारिंग सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी एंड मोर। रिलीजिंग 14th अगस्त आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क सिंगापुर।
8: वेलकम बैक, रेडियो मस्ती 24/7 पर रेणुका की बारी चल रही है। और थोड़ी देर पहले सवाल कुछ ऐसा आया था कि दोस्ती में एक दोस्त ने दूसरे से पूछा कि कल मुझे क्यों नहीं बुलाया गया, तो उसने बता दिया कि शायद इसलिए क्योंकि यू डोंट ड्रिंक। लेकिन उस इंसान ने जाकर इमोशनल होके ऑर्गेनाइजर से बात कर ली। ऑर्गेनाइजर ने पूछा कि तुम्हें किसने बताया, और इस इंसान का नाम आ गया। और अब इस इंसान को कुछ लोग उस ग्रुप में शक की निगाहों से देख रहे हैं कि क्या तुमने लड़ाई कराने की कोशिश करी थी।
9: नो फिल्टर्स, नो जजमेंट, जस्ट योर लेटर्स। डियर मस्ती, दिल से।
8: भाई ये बात तो मानने की है कि इधर के उधर करने के इल्जाम में कई बार सच और कई बार अननेसेसरली दोस्त फंसी जाते हैं। Many of us have found ourselves in this situation, caught in the middle without ever wanting to be there, right? First of all, from what you've shared, ऐसा तो लग नहीं रहा कि आप कोशिश कर रहे थे to create trouble. आपने एक सवाल का जवाब honestly दिया, आपकी intention was not to hurt anyone. लेकिन intention बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ. Life also teaches us something else. Every truth does not need an immediate answer. कभी कभी लोग हमसे सवाल पूछते हैं when what they really want is reassurance. और friendships में there are moments जब एक simple सा I'm not really sure, maybe you should ask them directly. बस यही एक लाइन बोलना can save a lot of unnecessary misunderstanding. और अगर आपको लोग कह रहे हैं that you're a snitch, don't spend too much time spending अपनी energy उस पे to defend yourself, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका दिल was in the right space. बस ये कह दीजिए, I wasn't trying to create a problem, I answered honestly and I'm sorry it led to a misunderstanding. Notice कीजिए, आप apologize कर रहे हैं for the situation, not for being an honest person. Remember that. And maybe इस पूरे के पूरी सिचुएशन में हम सबके लिए एक छोटा सा लेसन है. इफ वी हैव अ क्वेश्चन अबाउट समवन, समटाइम्स द काइंडेस्ट थिंग टू डू इज टू आस्क दैट पर्सन डायरेक्टली. फ्रेंड्स के थ्रू मत पूछो, अजम्पशंस मत करो, बिकॉज द मोर पीपल अ कॉन्वर्सेशन पासेस थ्रू द फर्दर इट मूव्स अवे फ्रॉम द ट्रूथ. वो हमारी गेम होती है ना चाइनीज विस्पर्स की, कि बस एक को कुछ कहा, दूसरे ने कुछ कहा और एंड तक पहुंचते पहुंचते बात का मीनिंग ही बदल जाता है. हर बात सच बोलना जरूरी है, लेकिन कब, कैसे और किससे कहनी है उसकी समझ भी उतनी ही जरूरी है. समझे कि नहीं? छोटा सा ब्रेक एंड आई विल बी बैक लेटर, जब मुझे ये लोग आने देंगे बैक टू द शो विद माय क्वेश्चन. स्टे ट्यून्ड.

Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं हूं अंशा यहां पर आपके साथ। एंड चलिए हमारी अगली चिट्ठी हमारा कर रही है इंतजार और वो कुछ ऐसा कहती है दैट डियर मस्ती, मेरे क्लोज पीपल ऑफ्टन ये कहते हैं कि मैं बात करते वक्त बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती हूँ। इतनी बार सुन चुकी हूँ कि अब नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी बोलने से पहले काफी ज्यादा सोचने लगी हूँ। रिजल्ट ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं चुप रहती हूँ और अब लोग कहते हैं कि तुम्हारा तो कोई ओपिनियन ही नहीं होता है। मैं बोलूं तो टू मच, ना बोलूं तो अपेरेंटली मेरी कोई वॉइस नहीं। मैं करूं तो क्या करूं? हाय है पढ़ो, अगली बार बोलने से पहले दिमाग में फिल्टर आपने लगा लिया, ये बोलूंगी तो बुरा तो नहीं लगेगा। फिर एक और फिल्टर आया, कहीं फिर से ब्लंट ना हो जाओ। और धीरे धीरे बोलने से इजियर चुप रहना लगने लगा। बट डियर लिसनर, मैं आपसे ये तो नहीं कह रही हूँ कि दुनिया गलत है और आप बिल्कुल मत बदलिए एंड ऑल दोस थिंग्स, बट अगर डिफरेंट पीपल डिफरेंट सिचुएशंस में आपको सेम फीडबैक दे रहे हैं तो उसे कम्प्लीटली डिसमिस कर देना भी उतना वाइज नहीं होगा। फीडबैक को इंसल्ट नहीं इंफॉर्मेशन समझकर अगर आप उसको देखें, आप अपने आप से पूछिए क्या प्रॉब्लम मेरी बात में है या मेरी बात करने के तरीके में। बिकॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बुरी क्वालिटी नहीं होती है। एक्चुअली मुझे पर्सनली स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग काफी सही लगते हैं, कम से कम मुझे गेसिंग गेम तो उनके साथ बिल्कुल नहीं खेलना पड़ता। लेकिन ऑनेस्टी और हार्शनेस में डिफरेंस होता है। आपको अपनी ऑनेस्टी लूज नहीं करनी है, बस डिलीवरी पे शायद थोड़ा सा काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये आइडिया बिल्कुल भी काम नहीं करेगा के बजाय मुझे इसमें कुछ कंसर्न सा दिख रहा है, डू यू वॉन्ट टू नो, या तुम गलत कर रहे हो, बिल्कुल ऐसे बजाय मैं शायद I just look at it in a different way. Thought वही है, opinion वही है, बस packaging थोड़ी सी softer हो गई है। और एक छोटी सी शायद trick आप try कर सकते हो कि just check with yourself बोलने से पहले, is it true? Is it necessary? And can I say it in a better way? तीनों का आंसर हाँ है, then say it. उसके बाद सामने वाले की हर रिएक्शन को कंट्रोल करना आपका काम नहीं है। सो प्लीज दूसरों को कंफर्टेबल रखने के चक्कर में अपनी आवाज कंप्लीटली बंद नहीं करना है आपको, बिकॉज वो सोल्यूशन नहीं है। आपको लेस ऑफ योरसेल्फ नहीं बनना, आपको बस अपने आप को थोड़ा मोर अवेयर वर्जन बनाना है। और अगली बार कोई कहे कि तुम्हारा कोई ओपिनियन नहीं है क्या, तो मन में जरूर कहना कि हाँ भाई अभी तो तुम लोगों ने ही म्यूट पर डाला हुआ है। समटाइम्स इट इज सच अ फन थिंग टू डू, जस्ट कीप क्वाइट एंड वॉच द होल ड्रामा अनफोल्ड राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज एंड देन से कि ओके इट्स ओके, I think it is better this way. Nay, I'm sure you would have felt like that at some point of time. Dear listener, I hope this helps. Radio Masti 24/7 live, but stay tuned kyunki hum wapas aane wale hain bas kuch hi der mein.

0: लेगा तो
1: और कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
2: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
3: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।

डियर मस्ती दिल से, यही है इस शो का नाम। मैं हूँ अंशरा ऑन रेडियो मस्ती 24/7। वेल, अगली चिट्ठी को बिल्कुल पढ़ते हुए, ये चिट्ठी कहती है, डियर मस्ती, मैंने अपने एक कलीग को काफी बार ऑफिस में दूसरों के जोक्स का टारगेट बनते देखा है। मैं उसके क्लोज भी नहीं हूँ, बट ऑनेस्टली अब देखकर अनकंफर्टेबल सा लगता है मुझे। मेरा मन करता है उससे जाकर कहूँ कि व्हाई डू यू कीप टेकिंग इट, एक बार बोलो कि यू डोंट लाइक इट एंड आस्क देम टू स्टॉप। But then I wonder, am I interfering in something that's none of my business? It's not my circus. But does that mean I should kind of close my eyes when something clearly feels off? My dear listener, किसी चीज का हमारी प्रॉब्लम ना होना और किसी चीज का गलत लगना, क्या दोनों एक साथ पॉसिबल है? That's what I'm kind of thinking right now. और मुझे लगता है यहाँ पहले एक छोटा सा डिस्टिंक्शन भी है। हम फ्रेंड्स के बीच ना एक दूसरे की टांग हम लोग खींचते हैं, मजाक करते हैं, दैट्स परफेक्टली नॉर्मल। लेकिन अगर जोक बार बार एक ही इंसान पर हो रहा हो और वो अनकंफर्टेबल दिख रहा है, उसकी डिग्निटी हर्ट हो रही है और बाकी सब उसकी डिस्कम्फर्ट को एंटरटेनमेंट बना रहे हैं, देन मे बी इट्स नॉट फनी एनी मोर। Having said that, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप सीधा जाकर उनसे बोल दो कि तुम स्टैंड क्यों नहीं लेते, गिव इट बैक टू देम, बिकॉज हमें राइट नाउ ये पता ही नहीं है कि वो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं, राइट? मे बी कॉन्फ्रंटेशन इज समथिंग डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन, मे बी ऑफिस डायनामिक्स जो है उसमें इन्वॉल्व है, मे बी वो फ्रीज कर जाते हैं, या हो सकता है कि वो सिचुएशन आपसे बिल्कुल डिफरेंटली ही देख रहे हो। सो डोंट डिसाइड फॉर हिम वॉट ही शुड फील, आस्क हिम वॉट ही फील्स। अगर मैं आपकी जगह होती तो मे बी यू नो कभी चाय पे निकल गए, या फिर कभी कॉफी ब्रेक पे ऐसे निकले कभी साथ में उनके, तो यू नो, हे आई होप यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आई हैव नोटिस सम ऑफ द जोक्स पीपल मेक अराउंड यू, आई जस्ट वांटेड टू चेक क्विकली, आर यू ओके विद ऑल ऑफ दैट? उसके बाद बस लिसन टू वॉट ही सेज। अगर वो कहे कि अरे नहीं यार, हम तो ऐसे मजाक करते हैं, फाइन, You have checked in, respect his answer. लेकिन अगर वो कहे कि actually मुझे अच्छा नहीं लगता, but I don't know what to do, then maybe you can say that you don't have to laugh along just to keep things comfortable. You are allowed to say, guys, enough. I don't find this funny anymore. और अगर behavior genuinely bullying, humiliating या persistent workplace harassment जैसा हो, then rather than telling him to give it back, encourage him to document what's happening and consider speaking to any appropriate manager ya fir HR channel. And dear listener, ek aur cheez jo aapke letter mein, I really found it good that aapko bura laga aur aapne notice kiya. Please is instinct ko lose kabhi mat karna. Hame na har battle mein jump nahi karna hai, true. हर किसी को रेस्क्यू भी नहीं करना है, वेरी ट्रू। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम अनकंफर्टेबल चीज देखकर कह दे भाई नॉट माय क्लाउन, नॉट माय सर्कस, नॉट माय प्रॉब्लम। समटाइम्स काइंडनेस इज नॉट रेस्क्यूइंग समवन, समटाइम्स काइंडनेस इज सिंपली गोइंग अप टू देम एंड क्वाइटली आस्किंग, हे आर यू ओके, और फिर उन्हें डिसाइड करने देना कि उन्हें आपसे क्या चाहिए, है ना? होप दिस हेल्प्स। स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। जी हाँ, मस्ती दिल से, जी हाँ, यही है इस शो का नाम।

0: कुछ पुरानी धुने, कुछ भूली बिसरी यादें,
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान,
0: कोई आवाज, कोई साज। सिनेमा की दुनिया के किस्से रुलाते, हंसाते, उदासी भरे, खिलखिलाते किस्से समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से।
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
3: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
4: Namaste behnor bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

एंड आई एम बैक रेडियो मस्ती 24/7 येट अगेन. एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल लेके वापस आई हूँ, लेकिन आई एम श्योर आप से बहुत से लोग इस सवाल के साथ में बिल्कुल अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे. डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है. हाय मस्ती, आई रिसेंटली लॉस्ट माय जॉब. ऑफिशियली इट वाज कॉल्ड अ रीस्ट्रक्चरिंग, बट डीप इनसाइड मुझे मालूम है कि मेरा रिपोर्टिंग मैनेजर, उसको मैं कभी पसंद नहीं था. देर वॉज फेवरेटिज्म, देर वॉज बायस, एंड नो मैटर हाउ हार्ड आई वर्क्ड, आई ऑलवेज फेल्ट आई वॉज फाइटिंग एन अपहिल बैटल. इवेंचुअली आई वॉज आस्क्ड टू लीव. What hurt me even more wasn't losing my job, it was losing the people I thought were my friends. These were colleagues I had helped countless times. I stayed back late for them, covered for them, supported them during difficult times. Lekin mere chhodne ke baad, silence. Very few even sent a message. No one asked how I was coping. No one stood by me. It made me question everything. Were they ever really my friends? How do I stop feeling so hurt and disappointed? भाई ये वाला सवाल भी मैं कहूंगी कि feeling abandoned by people जो आपको लग रहा था कि आपके दोस्त हैं, retrenchment, restructuring, office politics के बीच में, तो आप बहुत भोले हैं, इतना ही कहूंगी मैं. लेकिन please don't feel hurt with what you have been through or what I am saying right now. फिलहाल के लिए एक छोटा सा यहाँ पर म्यूजिकल ब्रेक, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, इसीलिए ये वाला गाना आपके लिए. आप जैसे और हम सब जैसे बड़े सारे ऐसे लोग होते हैं जो सीखते हैं गलतियां करके, या जिंदगी के कुछ मोड़ पर हमें सिखाया जाता है. स्टे ट्यून्ड, वापस आती हूँ बहुत ही जल्द.

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart योर पर्सनल ग्रोसर।
3: They are fresh. They are hot.

टू रूलिंग द काउंटडाउन. ये है मस्ती टॉप 20. नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स.

वेलकम बैक. रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है रेडियो मस्ती दिल से. जी हाँ, वही वाला शो जहाँ पर आप ही की चिट्ठियाँ इस पूरे के पूरे शो को बनाती हैं और साथ ही में हम सबको एहसास दिलाती हैं कि कभी कभी रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको बेहतरीन समझ लेता है बाकी बहुत सारे ऐसे लोगों से जो आपके आस पास रहते हैं. डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है. नो जजमेंट एंड डेफिनेटली हमें आपका नाम भी जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जी हाँ, आपने कुछ देर पहले बताया कि रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से आपको दफ्तर से निकाला गया, ऑफिस से बोला गया कि आपकी जॉब अब नहीं है, लेकिन आपको डेफिनेटली लगता है कि यहाँ पर क्या होता है, बॉसेस का बहुत रोल होता है और वहाँ पर बायस और वहाँ बहुत कुछ. एनीवे, लूजिंग अ जॉब इज पेनफुल बट लूजिंग योर फेथ इन पीपल कैन हर्ट इवन मोर. When we are working together every day, it's easy to believe we are one big family. We have lunch together, celebrate birthdays, share jokes, help each other through stressful projects. And then, एक दिन ऐसा होता है that someone leaves. Life moves on, meetings continue, new projects begin, और suddenly आपका जो फोन है ना, बिल्कुल चुप हो जाता है. Does that mean कि ये relationships fake थे? Not really. कभी कभी जो लोग हैं ना साइलेंट इसलिए हो जाते हैं बिकॉज दे डोंट नो व्हाट टू से. समटाइम्स दे आर अफ्रेड दैट सपोर्टिंग यू ओपनली माइट अफेक्ट देयर ओन पोजिशन. और हाँ, समटाइम्स दे वर सिंपली कॉलीग्स, नॉट लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स. एक बहुत ही मुश्किल लेसन, बहुत ही हार्डेस्ट लेसन ऑफ लाइफ इज नॉट एवरी वन हु वॉक्स बिसाइड्स यू इज वॉकिंग विद यू. सम पीपल आर कंपेरिजन्स फॉर अ companions for a season, and a workplace can give you wonderful memories, but it shouldn't become the only place where your identity or your friendships live. इसीलिए किसी और का साइलेंस आपका वर्थ डिसाइड करे, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि लोग जो वाकई आपके लिए केयर करते हैं ना, वो ढूंढ लेंगे आपको इवन आफ्टर यू लेफ्ट द ऑफिस. एंड दोज हु डोंट हैव सिंपली शोन यू वेयर द रिलेशनशिप बिगन एंड वेयर इट एंडेड. एंड एक दिन, बस कुछ ही समय के बाद आप रियलाइज करेंगे, यू लुक बैक एंड यू विल से लूजिंग दैट जॉब डिडंट जस्ट क्रिएट स्पेस फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी, इट रिवील्ड हु जेन्युइनली बिलोंग्स इन योर लाइफ. और कभी कभी यही जिंदगी की सबसे बड़ी प्रमोशन होती है. कहते हैं ना, कभी कभी जिंदगी एक दरवाजा बंद करती है सिर्फ इसीलिए नहीं कि नया दरवाजा खुले, बल्कि इसलिए भी कि हमें पता चले कौन सच में हमारे साथ चल रहा है. आप चल रहे हैं ना मेरे साथ? चलिए. बी टफ बिकॉज लाइफ विल मेक यू टफ वन वे और द अदर. स्टे ट्यून्ड.

0: some shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
1: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
2: हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
0: नो नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
2: चेक इट

0: नमस्कार एंड वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से। मैं हूं आपकी अंतरा यहां पर आपके साथ। अब डियर मस्ती जो है वो एक ऐसी जगह है जहां हम बात करते हैं रियल लाइफ की, रियल इमोशंस की, रिलेशनशिप्स की, मेंटल वेलबींग की और उन फीलिंग्स की भी जो कभी कभी दिल में तो बहुत होती हैं लेकिन कहने के लिए कोई नहीं मिलता। बिकॉज समटाइम्स वी डोंट रियली नीड एडवाइस और सॉल्यूशंस, बस कोई चाहिए जो बिना जज किए हमें सुन सके। और आज मेरे साथ एक ऐसे ही इंसान जुड़ रहे हैं डियर मस्ती इस शो पर, जिनका काम भी इसी थॉट से कनेक्ट करता है। अ वेरी वार्म वेलकम टू श्रीधर, फाउंडर ऑफ संघर्ष साथी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका एम है लोगों तक पहुंचना, उनकी बातें सुनना और उनके स्ट्रगल्स में उन्हें वो लिसनिंग ईयर देना जो शायद उस वक्त उन्हें कहीं और ना मिल रहा हो। एंड आई थिंक यही वो ब्यूटीफुल कॉमन थ्रेड है जो संघर्ष साथी और डियर मस्ती दिल से को कनेक्ट करता है। पीपल शुड हैव अ स्पेस वेयर दे कैन टॉक एंड फील हर्ड। So, Shridhar, a very warm welcome to Dear Masti Dil Se on Radio Masti 24/7. काफी अच्छा लग रहा है आज के दिन आपसे जुड़कर यहाँ पर।
1: Hi, Antara. Very nice to be a part of this initiative. Wonderful to see you all here and all those audiences who are listening. This is a great initiative started by Radio Masti. Glad to be a part of it.
0: Hi. So, Shridhar, tell us a little bit more about what Sangharsh Sathi. क्या है? कौन है? कैसे बना? How did it all start? Tell us more about it.
1: It's a very touching initiative that I started. And the reason behind that was when my 18-year-old nephew jumped down the 84th floor. And I was thinking, yeah, there's such a long life ahead. Then why did this happen? That was the first instant. Then, dusra jab one of my friend's daughter, who was 17 years old, right girl, with such a soft natured heart, she would go out to help everyone, and suddenly one day she's gone. And the third instance was my own friend in my first PUC. Sab kuch chal raha tha, itni bubbly thi, so much comfort I would feel around her, and all of a sudden one day she's gone. All these people were happy on the outside, but what really made them take this decision was very surprising. So I thought, kahin pe these people are facing some kind of inner struggles, ek aisa sangharsh these people are facing, which may be normal for somebody who has everything. And 10 years back, I thought, okay, let us start somewhere, you know. So, thoda thoda videos kar raha tha, it was just going on. And ek din, jaise main bhajan karta hoon, to bhajan practice ke liye ja raha tha, to cab mein so gaya. And ek aisa vision aaya ki the girl who was with me when I was in my first PUC, my friend, it is like suddenly I saw her and bas ek do hi shabd bola usne. Usne bola thank you and she just disappeared. Phir ek aisa signal aaya and itna phut phut ke roya ki main socha theek hai, let us get it started somehow. Mujhe pata nahi kaise hoga ye sab, and let us just get it started somehow. And that is where Sangharsh Sathi came out.
0: कभी कभी यूनिवर्स भी हमें छोटे छोटे हिंट्स देता है एंड सडनली थिंग्स स्टार्ट जस्ट फॉलिंग इनटू प्लेस। एक थॉट को डायरेक्शन मिलती है, मोमेंटम मिलता है और वही थॉट आज बन चुका है संघर्ष साथी। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, श्रीधर के साथ और भी कुछ जानेंगे और इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार वापस से हमारी होगी मुलाकात। ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7, यह है डियर मस्ती दिल से।

0: दिस इंडियन इंडिपेंडेंस डे एक कहानी जो हर हिंदुस्तानी के दिल को छू जाएगी।
1: कौन सी आजादी और किसका मुल्क?
0: एक घर, दो मजहब।
2: आप यहाँ नहीं रह सकते।
3: मैं कितने नहीं जाना, ये मेरा घर है।
0: हर बंटवारे के बीच कुछ रिश्ते सरहदों से बड़े होते हैं।
4: वो माँ है, माँ माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए।
0: बंटवारा 1947 स्टारिंग सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी एंड मोर। रिलीजिंग 14th अगस्त आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क सिंगापुर।

0: यू नो व्हाट, आप चाहे तो पूरा आसमान आपके पास खाली पड़ा है, और आप ना चाहें तो आप जहां पर सैटिस्फाइड है ना, वहीं पर रहिए। लाइफ में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। डियर मसीह दिल से शो पर मैं आरजे नुपड़ा आपके साथ। रिश्तों में एक बाउंड्री बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लगता बहुत है कि हाँ मैं जो करता हूँ वो, या मैं जो करती हूँ वो सही थॉट से करती हूँ, बट बाय द टाइम आपके सेकेंड थॉट वाला जो मन है ना, वो ये कह रहा है कि नहीं तुमने आज किया है जो गलत किया है, तो उसको भी सुना कीजिए। इतने जिद्दी होने से भी कोई फायदा नहीं है। अंजी, डियर मसीह दिल से शो पर मेरे हाथों में जो लेटर आया हुआ है, उन्होंने मुझे बताया है कि हाय डियर मस्ती, आई एम अ हैप्पी मैरिड पर्सन, बट स्टिल इन माई डेली लाइफ जब मैं MRT से, टैक्सी से, या ऑफिस से, वर्क स्पेस से कहीं भी ट्रैवल करती हूँ ना, तो मुझे बहुत जल्दी सामने वाले शख्स के ऊपर क्रश हो जाता है और वो चेहरा मेरे जहन में रह जाता है। तो मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ? चलो ठीक है, इन्होंने जो मुझे लेटर भेजा है ना, इनकी जो क्रश की डेफिनेशन है ना, वो बहुत बड़ी है। मतलब इतनी जल्दी किसी पर दिल आ जाना, ये सही बात है या गलत बात है, आपके अकॉर्डिंग क्या है, आप मुझे जब तक बताएंगे तब तक मैं थोड़ी सी देर में गानों के बाद वापसी
1: करूंगी।
0: बिल्कुल ऐसे ही खूबसूरत गाने डियर मसीह दिल से शो पर कमिंग अप इन अ शॉर्ट वाइल विद द आंसर। डोंट गो एनीवेयर।

टॉप टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20। नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये कि आपके मन में जो ख्याल आ रहे हैं वो सही है या गलत है, या आपका मन भी आपको नहीं बता पा रहा है। डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपड़ाव के साथ, और मुझे लगता है कि जब आपको खुद के थॉट्स पर क्वेश्चन मार्क आने लगे तो किसी और से पूछ ही लेना चाहिए। एंड स्पेशली डियर मस्ती दिल से शो पर हम यहाँ पे आपको बहुत ही वो कहते हैं ना प्रिवेसी के साथ बिना आपका नाम बताए सारे डिस्कशंस कर जाते हैं, और शायद इसी वजह से इतने सारे सवाल हमारे पास आ जाते हैं। तो थोड़ी देर पहले मेरे पास एक सवाल आया जिसमें लेटर में लिखा था, हेलो डियर मस्ती, आई एम अ वेरी हैप्पी मैरिड पर्सन, बट MRT ऑफिस या वर्कआउट स्पेस जहां भी मैं जाती हूँ मुझे लोगों के ऊपर क्रश आ जाता है, व्हाट शुड आई डू। वैसे तो मैं आपको बोलूंगी कि क्रशश मत करो यार, शादीशुदा इंसान हो, बट एक पॉजिटिव चीज बताती हूँ, ये जो क्रश है ये आपको कुछ गलत करने को तो मजबूर कर नहीं रहा है कि आप सामने वाले को कमिटमेंट देकर आ जाओ कि मैं तुम्हारी लाइफ में ऐसे ऐसे ऐसे, ये तो बस एक मन का थॉट है। तो मेक इट लाइक अ सुपर पावर। हाँ जी, जब आप MRT से किसी बंदे पर क्रश करते हुए एक सफर से दूसरी सफर तक जा रहे हो, एक लंबा रास्ता तय कर रहे हो, तो आपका रास्ता कितनी जल्दी कट रहा है यार, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि वो आधा घंटा बोरिंग सा कहाँ निकल गया। राइट, आपके मेंटल हेल्थ को भी बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा वो। इवन आपका वर्कआउट स्पेस, वहां पर अगर आपका किसी पर क्रश आ रहा है तो इसी बहाने आप डेली बेसिस पे जिम तो जाओगी ना। हाँ और भी बहुत सारी जगह जहां पे आपको कोई ना कोई शख्स पसंद आ जा रहा है और आप वहां पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रही हो, इसको पॉजिटिव वे में लेना शुरू करो। पर हाँ, ये जरूर हमें ध्यान रखना है कि ये जो क्रश वाली डेफिनेशन है ना, ये क्रश वाली ही रहे, हम इससे अपने पुराने रिश्ते क्रश ना कर दें यार। डियर मस्ती दिल से शो पर

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart योर पर्सनल ग्रोसर।
3: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
4: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
5: Namaste, bahnor bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

आज का शो आपको कैसा लगा? अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स आरजे अंतरा और नूपुर और साथ ही में मैं रेणुका, आपने आज एक नई आवाज भी सुनी, राइट? पीपल हु वर्क ऑन द ग्राउंड क्लोजर टू रियलिटी, उनको भी अपने शो के साथ जोड़कर श्रीधर के रूप में हमें बहुत अच्छा लगा। अ वेरी गुड इवनिंग, बट बिफोर आई गो, नो फिल्टर्स, नो जजमेंट, जस्ट योर लेटर्स, डियर मस्ती, दिल से। तो चलिए, आज की चिट्ठियों ने एक बार और एक बात याद दिला दी, इंसान होना बहुत सिंपल भी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी। कभी हम अपने दिल को समझने की कोशिश करते हैं, कभी दूसरों के बिहेवियर को, और कभी हम खुद से ही सवाल पूछते रह जाते हैं, मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, लोग ऐसे क्यों बदल गए, मैं और अच्छा क्या कर सकता था। शायद हर सवाल का परफेक्ट जवाब कभी नहीं मिलेगा, लेकिन हर बार जब हम रुक कर सोचते हैं, खुद को ऑनेस्टली देखते हैं और थोड़ा सा बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं, तब जिंदगी हमें धीरे धीरे बदल देती है। आज अगर किसी लेटर ने आपको अनकंफर्टेबल फील कराया या सोचने पर मजबूर किया, तो शायद वही उसका पर्पस था। बिकॉज ग्रोथ बिगिंस नॉट व्हेन वी ऑल हैव ऑल द आंसर्स, बट व्हेन वी आर विलिंग टू आस्क आवरसेल्व्स द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर मेकिंग डियर मस्ती दिल से मोर देन जस्ट अ रेडियो शो। हर हफ्ते आपका ट्रस्ट आपकी कहानियों के साथ हमारे पे, योर फियर्स, योर होप्स, और कभी कभी अपनी वो बातें जो आपने शायद किसी और से कभी नहीं कही। कीप राइटिंग टू अस, बिकॉज समवेयर योर लेटर मे बिकम समवन एल्सेस स्ट्रेंथ। मैं हूं रेणुका और ये डियर मस्ती दिल से। अगले ट्यूजडे तक, बी जेंटल विद अदर्स, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, और याद रखिए, दिल को समझने की जर्नी कभी खत्म नहीं होती। गुड नाइट, एंड ऑफ कोर्स हमारा एनकोर सुनना मत भूलेगा थर्सडे रात को 9 बजे। लेकिन वैसे हम आपको मिलेंगे नए सवालों के साथ अगले ट्यूजडे। टेक गुड केयर, बाय फॉर नाउ।

0: बकर बब्बे पो अस्सी नब्बे पूरे सौ रात के बज गए पौने दो जो होता है होने दो।
1: जादू है नशा है
2: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना।

सुना था यहाँ आदमी पूरी जिंदगी अपनी किस्मत दो ट्रैक से फास्ट ट्रैक लाने में निकाल देता है, पर ढाई घंटे में मेरी किस्मत ऐसी स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक पर आ जाएगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सजा मजा बन जाएगी, ये भी कभी सोचा नहीं था।

0: दीपावली बुझ कहीं की।
1: जादू है नशा है
2: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना,
3: रात अकेली है।
4: जोश में रहो।
5: As you say, sunshine.
6: Sunshine? कहाँ से ढूंढकर लाते हो तुम ये सब प्राचीन वर्ड्स?
5: जहाँ से मैं आया हूँ।
6: ओह, तो आप यहाँ क्या लेने आए हैं?
5: प्यार।
6: Just a tip. हमारी दुनिया में प्यार व्यार नहीं होता, तो शायद आपको खाली हाथ जाना पड़े, क्यों ना?

एक बात समझ में नहीं आती, अच्छे लोग क्यों मरते हैं, अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है, रोने वाला क्यों हंसता है, हंसने वाला क्यों रोता है। सह लिया बहुत सह लिया, खामोशियों में बहुत रह लिया, अब दिल का शोर सुन, इरादे कुछ

देश बदल गया, सब कुछ बदल गया। एक थप्पड़ मारोगे तो 100 थप्पड़ मारेंगे, आंख उठा के देखोगे तोड़ देंगे फोड़ देंगे।

0: सिक्स है, एक जज्बा है, जुनून है, एक रुतबा है, फोर्स बगावत है, एक पागलपन है, शहादत है, एक दीवानगी है, फोर्स एक आवाज है, तेरी आवाज, मेरी आवाज, हम सबकी आवाज। 120 करोड़ एक साथ मिलकर चिल्लाए तो पूरी दुनिया को सुनना ही पड़ेगा, तो चिल्लाओ।
1: जादू है, नशा है
2: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना।

0: शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

0: शांति चल रही थी, शांति ओम एंड गोरे चिट्टे मतलब आते ही शुरू
1: मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है।
0: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कहां हो भाई, सारे के सारे हो कहां हो?
1: रेणुका ना आते आते उनको ये ट्रांजिशन ये जो होता है ना, वो इतना उनके लिए एब्जॉर्ब करना हर बार, हर फ्राइडे सुबह, मतलब इतना ज्यादा उनको टेरिबल सा लगता है। अभी बस हमने सबको कहा था शांति शांति, और ये देखो इस लड़की ने फिर से लगा दिया, मतलब हू हा ही हू।
0: या बट व्हाट टू डू, होता कुछ ऐसा है कि मैं 20 मिनट ड्राइव करती हूँ जब, ठीक है, तो उस समय जब रेडियो मस्ती चल रहा होता है तो वहां पर सिर्फ भजन चल रहे होते हैं, 6:30 बजे से लेके बस 7:05 जब होते हैं, जब मैं अंदर घुसती हूँ तो यहाँ शुरू हो जाता है पहला गाना हमेशा। एक तो इसका खून ऊपर नीचे हो रहा होता है क्योंकि मैं जानबूझ के इसका फोन नहीं उठाती सुबह, इसको समझ में नहीं आता मैं आ रही हूँ नहीं आ रही हूँ, शी इज जस्ट गोइंग क्रेजी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड शी इज ऑल सेट टू टेक ओवर। फिर मैं आती हूँ, गाना चल रहा होता है पहला, और मैं कहती हूँ ये लो, गाड़ी बंद करने से स्टूडियो तक आने में कितना ट्रांजिशन हो गया यार, है ना। But on Radio Masti guys, it is time for Masti Madness.
1: ना तो कारवा की तलाश है, बट दिस लास्ट मिनट एंट्री मारने की चीज, इट्स लाइक सो कंसिस्टेंट विद रेणुका, एंड व्हेनेवर शी सीज दिस आई रिमेम्बर द रिकॉर्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग वाला टाइम।
0: आई मीन
1: उससे ज्यादा पैल्पिटेशन मुझे आज तक जिंदगी में कभी नहीं हुई है।
0: अरे तुमसे ज्यादा तो मिस्टर एंग्स ये पूछो ना, वो जो उस समय परेशान हुए पड़े थे कि भैया 7 बजे इन्होंने सुबह बोला है शुरू करेंगे अपना रिकॉर्ड, इफ यू पीपल डोंट स्टार्ट एट 7 AM देन दैट मींस दैट यू आर डिस्क्वालिफाइड। ऐसे कैसे सर, 36 घंटे हमने बोलना है, आ रहे हैं आप बैठो ना आराम करो, और 7:02 पे रेणुका अंदर आती है, ओके आर वी रेडी, और इसका खून बिल्कुल सूख चुका होता है अंतरा का।
1: मेरा पूरा सूख चुका है, मतलब मैं कह रही हूँ कि ये लाइक व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट नोबडी नोज। और यहाँ पर अच्छा ऐसा नहीं है कि इंस्ट्रक्शंस नहीं आ रही, इंस्ट्रक्शंस भी पूरे आ रहे हैं, गणपति जी का वो लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने कहा बंदी सारे इंस्ट्रक्शंस दे रही है, खुद नहीं आ रही है, क्या चल रहा है? डुअल डॉग शो में मुझे दो आवाजें निकालनी है, क्या करना है?
0: सांस ले लो अंतरा, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है शो की, सांस ले लो। गुड मॉर्निंग एवरीबडी, बाय द वे शो का नाम मस्ती मैडनेस है, ये अंतरा है, मैं रेणुका हूँ।

जब राजस्थान की हवाएं सिंगापुर के शाही स्वाद में घुल जाए, जब लाल मांस, दाल बाटी चूरमा, केर सांगरी और मीठे मीठे घेवर की खुशबू दिल को छू जाए, जब शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट लेकर आए द रॉयल फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान का एक्सक्लूसिव 10-day फेस्टिवल, तो बस बात शाही बन जाए। The Royal Flavors of Rajasthan by Shahi Maharani North Indian Restaurant, 14th to 23rd August. Reserve and prepay online to enjoy the early bird menu at just $78 plus per person. Exclusively for dinner. Book your royal experience today at www.shahimaharani.com.

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक. जी हाँ, यहाँ पर इश्क जलाकर धुरंधर, इश्क इश्क प्यार व्यार, ऐसे ऐसे गाने जो अभी भी आपने सुने हैं उसके बाद मुझे लग रहा था कि सुबह थोड़ी सी भड़ास इसकी रह गई थी. व्हाई डोंट वी कंटिन्यू टू स्पीक अबाउट आवर सिंगापुर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स. अंतरा जी, वी आर स्टिल अनबीटन बाय द वे.
2: मस्ती मैडनेस, जहाँ न्यूज भी होती है. दैट इज ट्रू. और मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है. हम तो 36 के बाद भी ये बोल रहे थे कि हम थोड़ा और कर सकते थे. आई मीन 36 इज ओके, हमने बीट कर दिया, बट वी कुड हैव डन अ लिटिल मोर. आई मीन हु सेज दैट, जबकि हम मतलब सोए नहीं है, हम वेरी स्मॉल यू नो बिहाइंड द सीन. मतलब रात के कुछ 3:30, जब हम टोटल मतलब वो ट्रांस जोन होता है ना, हम दोनों को भी पता नहीं हम क्या ही बोल रहे हैं, बट हम कुछ तो बोल रहे हैं बिकॉज दैट इज द थिंग कि वी हैव टू कीप टॉकिंग. हमारे हम लोगों ने वी हैव चेंज इनटू अवर नाइट ड्रेसेस. ठीक है, दोनों तरफ की सीटों में हम दोनों बैठे हुए हैं. अभी जहाँ रेणुका बैठी हुई है सामने मेन माइक पे, और मैं दूसरी तरफ. हम रेणुका लाई थी घर से मसाजर कंधे वाला.
1: और वो कंधे वाला मसाजर मेरे मसाज के मेरे कंधों पर, और मैं अपने नाइट सूट पे, माइक सामने, और पूरा मतलब हमारे सिर्फ घर वाले सारे के सारे यहाँ थे उस टाइम पर. कोई बाहर का नहीं था, एक्सेप्ट सोमा, हु वाज देयर ऑफ कोर्स, द वॉलंटियर.
2: या शी हैज सीन इट ऑल.
1: उसने हमारा जो रूप देखा है रात को, और हमें लग रहा था कि कोई नहीं होगा, सुन ही नहीं रहा होगा कोई, सब सो गए. बट व्हाट वी डिड नॉट नो वाज दैट अपार्ट फ्रॉम मिस्टर रेंग, देयर वर फ्यू अदर पीपल हु वर एक्चुअली लिसनिंग टू अस, जिन्होंने सुबह ये बात रिवील करी. अब क्या रिवील करी हम बताते हैं आपको इन जस्ट अ लिटिल बिट, स्टे ट्यून्ड. गल मिठी मिठी बोल, यही तो हम कर रहे थे रात के 3 बजे. बट क्या बात कर रहे थे. इफ एनी ऑफ यू जो ट्यून्ड इन है राइट नाउ नो अबाउट दिस वन, या सुन रहे थे हमें, तो हमें बताओ जल्दी से. वी वांट टू इन्वॉल्व यू इन दिस वन. इफ नॉट तो बस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद आके बता देते हैं. क्यों अंतरा, बता दें क्या?
2: एकदम एकदम एकदम, बहुत ही इंटरेस्टिंग था वो तो, बहुत ही ज्यादा.

0: बनाना चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
1: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। Check it out.

0: चांद की सिफारिश छोड़िए, हम आपकी सिफारिश पर यहाँ पर बिल्कुल बताने वाले हैं आपको कि हमारे सिंगापुर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इन 2019 अगस्त, थैंक गॉड हमने कोविड से पहले वो कर लिया, अगर आज के दिन में कोई मैं बोलता ना करने के लिए, हम कहते नहीं हमसे ना हो पाएगा, नहीं नहीं
1: This is Masti Madness on Radio Masti.
0: वैसे अंतरा हमारे 24/7 को इस साल 10 साल हो रहे, क्या मूड है?
2: हम वापस सिंगापुर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ जा रहे हैं, हम उसकी बात करेंगे, हम इसकी बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे फिलहाल के लिए, क्योंकि ये मैं यू कैन नॉट अवॉइड सम थिंग्स, ये वापस घूम के आना है ये बात. सो एनीवेज हम लोग सिंगापुर बुक ऑफ रिकॉर्ड, अच्छा सोचो हम जब इसकी तैयारी कर रहे थे कि हम मतलब दो दिन तो यहाँ पे लग जाएंगे, सबसे पहली किस चीज की एक्सेल शीट बनी होगी
0: बताओ, खाने की
2: सबसे पहले खाने की एक्सेल शीट बनी थी, कैन यू इमेजिन, और उसमें कि अब यहाँ से इस टाइम पे हम मैकडॉनल्ड्स मंगा लेंगे, फिर उसके बाद ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, भाई एक एक ऑर्डर करने की जरूरत ही एक भी ऑर्डर करने की जरूरत,
0: नॉट इवन वन थिंग, बिकॉज एवरीथिंग जो भी यहाँ इस टेबल पे भरा हुआ था हमारे खाने के लिए, प्लस हमारे सारे जो गेस्ट आ रहे थे, जो भी आ रहा था यहाँ पर उनके खाने के लिए, वॉज ऑल सेंट बाय यू पीपल, नोबडी, वी डिड नॉट हैव टू ऑर्डर एनीथिंग.
2: Amazing. That was amazing. जिन्होंने वो कॉन्वर्सेशन सुना है ना, आज टिल डेट वो यही कहते हैं कि दैट वॉज द मोस्ट एंटरटेनिंग. हम जस्ट ट्रांस मोड पे बात कर रहे थे ना, तो आई एम श्योर दैट वो एंटरटेनिंग ही होगा.
0: It was beautiful. Yeah. When Antra and I were sitting ek dusre ke samne, and you know, in every hour we had to speak for 20 minutes. एंड वो भी बिना ऐसा नहीं है कि 20 मिनट बोल के हम 40 मिनट सोने चले गए, ऐसा नहीं, हर दो मिनट में हमारी आवाज आनी जरूरी थी किसी ना किसी की. सो एनीवे दैट हैपेंड एंड मिस्टर एंग वाज ऑफ कोर्स लिसनिंग पूरी रात, जो हमारे रिकॉर्ड कीपर थे. एंड यहाँ पर अंतरा ने एक उबासी ली, शी जस्ट योन्ड एंड आई सेड अंतरा हमारा तो यौन संबंध बन गया, क्योंकि क्योंकि मैंने भी यौन किया. इस तरह की बातें रात को हो रही थी, एंड सुबह सम ऑफ आवर लिसनर्स एक्चुअली सेड, गाइस यू वर द बेस्ट एट 3 इन द मॉर्निंग.
1: यू आर ट्यून्ड इनटू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, कीपिंग द वर्ल्ड बॉलीवुड एंटरटेन्ड एनी टाइम एनीवेयर.

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10।
1: अरे अरे अब बस 10 दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

0: Oh, I hate making love songs.
1: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
2: तो भाई अंतरा इज अगेन एंड अगेन रिफ्यूजिंग टू आंसर माई क्वेश्चन कि अंतरा 2019 में हमने 2009 का 3 घंटे का स्टेशन जब पहली बार बना था उसकी एनिवर्सरी मनाई थी 10 साल, लेकिन असली 10 साल तो अब हो रहे हैं हमारी मेहनत मुशक्कत के, राइट?
3: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन
2: कुछ तो होना चाहिए प्रोग्रामिंग हेड. गुड मॉर्निंग मस्ती मैडनेस रेडियो मस्ती 24/7 पर घूरती हुई अंतरा. तो मुझे लगता है खबर मुझे ही दे देनी चाहिए. तुम कुछ कहना चाहती हो?
4: हाँ जी प्लीज. नहीं नहीं, इतना सारे बिल मेरे पे फाड़ती है ऐसे बैठे बैठे. अच्छा, खुद इनको डिसीजन देने होते और सारे लिसनर्स को ना मेरे तरफ डायरेक्ट कर देती है जो, अरे मैं तो तैयार हूँ, उससे पूछ लो. और सारे मेरे पास जाते कि मतलब अंतरा तुम बताओ. मैंने कहा है मैं उनको कॉल लेना है. नहीं नहीं रेणुका ने कहा तुम डिसाइड करोगी. एंड आई एम लाइक हेलो, ये कहां से आया उड़ता हुआ तीर.
2: सिंपल बात है, एनीथिंग टू डू विद प्रोग्रामिंग, व्हाई वुड आई डिसाइड. मेरे पास बाकी डिसीजन लेने के लिए बहुत है. बट ऑन रेडियो मस्ती गाइस, एक आदमी ने एक ऐसा डिसीजन लिया है कि भाई एक इंटरव्यू चल रहा तुम्हारा, ठीक है, एंड द गाय डिसाइडेड टू वॉक आउट पहले ही प्रश्न के बाद. ओके, एंड क्यों? वेल ही सेड द पे वॉज डिसेंट, कंपनी भी अच्छी थी. मैं अंदर गया, मैंने हायरिंग मैनेजर के साथ हाथ भी मिलाया, सब कुछ हुआ. उसके बाद एक सवाल पहला पूछा गया, वर्किंग अनपेड ओवरटाइम. ओके, क्या तुम ये करने को तैयार हो? क्योंकि कई बार ऑफिस में लेट हो सकता है सो आपको ओवरटाइम के पैसे नहीं मिलेंगे. इज दैट ओके विद यू? इसने कहा, हाथ वापस मिलाया और मैंने कहा थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी.
4: हाँ जी, आई थिंक ये तो बिल्कुल भी सही है भाई. क्यों ही ऐसी चीज शुरू में ही क्यों एक्सेप्ट कर लो जो बाद में जाके तुमको कष्ट देने वाली है. है ना, पहले ही मना कर दो, बोल दो कि अच्छा ठीक है भाई तू रख अपनी नौकरी, हमें नहीं करनी ओवर टाइम तेरी.
2: सही बात है, लेकिन पहला ही प्रश्न ये यार, तुमने और कुछ नहीं पूछा, सीधा ये पूछा तुम्हारे अनपेड ओवर टाइम के बारे में क्या ख्याल है. उसने कहा करना पड़ता है. बोला हाँ, जब तक काम खत्म नहीं हो तो रहना पड़ता है और हम ट्रैक नहीं करते एक्स्ट्रा आवर्स. उसने सर ऐसा है कि मैं अपने आवर्स ट्रैक करता हूँ, मैं निकल रहा हूँ उल्टा ट्रैक. ओके थैंक यू.

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space, Dear मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: क्या करेगा ये आदमी इतना कुछ पता करके, क्या ही करेगा ये बताओ?
2: क्या करे क्या ना करे
1: ऐसी मस्ती मैडनेस जहाँ न्यूज़ भी होती है.
2: कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई. गुड मॉर्निंग अंतरा, क्या करना है बताओ ना
1: भाई. मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि ये जो भैया है ब्रायन जॉनसन भैया, ये क्या चाहते हैं भाई? समझ में आ गया कि ये अपनी उम्र बढ़ा, बहुत बहुत दिनों तक यंग रहना चाहते हैं, बहुत लंबा जीना चाहते हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है. तो उसके लिए उन्होंने किया, उन्होंने अपने ही बेटे का ब्लड इंजेक्ट करके ट्रांसफ्यूजन कराया, ऑल दोज थिंग्स. पर इतना सब कुछ करा के फिर अभी वो ऑटोइम्यून टाइप एक डिजीज हो गया जहाँ पे इनका पेट खुद ही को खा रहा है टाइप ऑफ. ये एक तो ये हो गई बात ब्रायन जॉनसन भैया की. भैया की जो गर्लफ्रेंड है उसको भी नहीं छोड़ा भैया ने, कि सिर्फ मैं ही क्यों, तू भी इस पूरे समय में बिल्कुल, मैं तेरे लिए भी बहुत केयर करता हूँ. तो अपेरेंटली ही, ऑफ कोर्स ब्रायन जॉनसन जो है, उन्होंने शेयर किया सोशल मीडिया पर दैट ही कीप्स अ 10 ml सैंपल ऑफ अपनी गर्लफ्रेंड केट टोलोस का मेंस्ट्रुअल ब्लड इन अ फ्रीजर मेंटेन्ड एट -80 degrees.
2: उससे होगा क्या, क्या करेगा वो उससे?
1: काफी कुछ भाई. एक तो वो कहता है कि ब्लड रिपोर्ट नॉर्मली ब्लड टेस्ट से इतना नहीं पता चलता जितना आपके मेंस्ट्रुअल ब्लड से आपका पता चलता है. तो उससे पता चल जाएगा कि उसको जवान और उसको लंबा जीने रखने के लिए, ऑब्वियसली मैं अकेला थोड़ी ना जीऊंगा, तो उसके लिए भी क्या क्या कुछ करना पड़ेगा
2: यार. एक बात बताऊं, डॉक्टरों को अपना काम करने दो ना यार. तुम जी लो, वो तुम अपना काम कर लो, खा पी लो अच्छा, तुम अपना पूरा ध्यान रख लो, लेकिन डॉक्टरों को अपना काम करने दो. ये क्या खून इधर उधर से निकाल निकाल के फ्रिज में रख रहे हो? I never understand this illogical behavior when people have, they are just jobless. दुनिया में there's so much to do. On Radio Masti 24/7, there's so much to do है ना. हमें आपको और भी बड़ी सारी न्यूज बतानी है, आप भी सोचो इसके बारे में और हमें हेलो तो बोल दो. गुड मॉर्निंग 9151896 3. अब तो नंबर भी याद रखने की जरूरत नहीं है, हमारे ऐप में ही ऊपर बटन है व्हाट्सएप का, वहीं पे दबा दो. लेजी पीपल आई टेल यू वी हैव गॉट.